ويقذفون بالغيب من مكان بعيد وحيد.

उन्होंने कहा कि हमारा परवरदिगार जानता है कि हम तुम्हारी तरफ पैगाम देकर भेजे गए हैं और हमारे जिम्मे तो साफ साफ पैगाम पहुंचा देना है और बस। वो बोले कि हम तुमको अपने लिए मनहूस समझते हैं, अगर तुम बाज ना आओगे तो हम तुम्हें संसार कर देंगे और तुमको हमसे दुख देने वाला अजाब पहुंचेगा। उन्होंने कहा कि तुम्हारी नहुसत तुम्हारे साथ है, क्या इसलिए कि तुमको नसीहत की गई? नहीं, बल्कि तुम ऐसे लोग हो जो हद से तजावुज कर गए हो। और शहर के परले किनारे से एक आदमी दौड़ता हुआ आया, कहने लगा कि ऐ मेरी कौम, पैगंबरों के पीछे चलो, ऐसों के जो तुमसे सिला नहीं मांगते और वो सीधे रास्ते पर हैं, और मैं क्यों उस जात की परस्तिश ना करूं जिसने मुझे पैदा किया और उसी की तरफ तुमको लौट कर जाना है।

0: खुशखबरी, लेजर हेयर रिमूवल गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ट जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे, बाजू, टांगे और पूरे जिस्म के गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए महफूज और मौसर ट्रीटमेंट। बार बार वेक्स और शेविंग से निजात, नरम, साफ और खूबसूरत जिल्द, कम वक्त बेहतरीन नतायज। अब गैर जरूरी बालों की फिक्र खत्म लेजर हेयर रिमूवल के साथ। आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद, थरी रोड मेहरापुर, 0300-33-8569।
1: इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर, होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद आई बा अख्तियार इदारो। इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर, नईन मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कर रेट ते दस्तयाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया, जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए, जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट, RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वनिए थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी। इरशाद ऑटोस हालाणी रोड मेहरापुर, राब्ते जे लाइ 0320-18-00-003।
0: खुशखबरी, अपनी जिल्द को दे नई ताजगी, चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है गहरी सफाई और फोरी ग्लो। जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे, सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार। फेशियल रेजुविनेशन, साफ तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जिल्द जदीद टेक्नोलॉजी के साथ महफूज और मौसर स्किन केयर। नोट, खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है। आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं। पता, रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद, थरी रोड मेहरापुर, 0300-33-8569।
2: मेहरान आयरन स्टोर हालानी, होलसेल डिपो, अ नेम टू बी ट्रस्टेड।
3: सरिया, गार्डर, टीयर, एंगल, चैनल पट्टी, लोही दरवाजा, सिल्वर जा चौंक, सीमेंट, रेती, क्रेश आई रंग वगैरह बाजार का बारियत दस्तयाब आई।
2: हाँ यचो, मेहरान आयरन स्टोर, नज़्द बलोच पेट्रोल पंप, नेशनल हाईवे हालानी।
3: राब्ते लाए प्रोप्राइटर गुलाम नबी मुगल, 0300-32-04372 आई 0242-46-0100।

0: कॉलम में मौजूद आहिन फौजी बायरन लाए खुसूसी रियायत हुंदी राबते लाए फौजी अब्दुल करीम 0301-54-31-456 ऐं तौकीर अहमद 0306-16-23-793।
1: अस्सलाम वालेकुम अदा।
2: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
1: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो, छा कजे?
2: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
1: न अदा।
0: यार आज कल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरा पर FM 94 ही हले थो। मु पंजो दुकान खोलियो तो FM मेरा पर ते पब्लिसिटी कराई। कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे।
1: मुझे दुकान जी बेड हलंदी?
2: हां दा, कारोबारी इश्तिहारात, आम इतला, मिलाद, मजलिस, सालगिरह जी मुबारक, मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी।
1: अदा जल्दी कर, मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा।
0: ऑफिस जी मेरापुर FM 94 नज़ गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर।
2: राबते लाए हाकिम अली जिस्कानी
3: 0301-399-2836।
4: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है। सुनते रहो जी FM 94।

0: पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जी कामयाब इलाज कयो वने तो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी खारिश फट फुरड़ियों बारन में कद जो न वधण मर्दन ऐं औरतुन में वजन जो न वधण उन्हें सभिनी बीमारियों जो कामयाब इलाज कयो वने तो राबते लाइ 0301-9186-850।
1: अदा
2: वालेकुम अस्सलाम। अदा छो परेशान आई?
1: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो छा कजे?
2: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
1: न? अदा
3: यार आज कल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरापुर FM 94 ही हले थो। मु पंजो दुकान खोलियो तो FM मेरापुर ते पब्लिसिटी कराई कारोबार एड़ो कामयाब जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे।
1: मुझे दुकान जी बेड हलंदी?
2: हां दा कारोबारी इश्तिहारात आम इतला मिलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी।
1: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा।
3: ऑफिस जी मेरापुर FM 94 नज गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर।
2: राबते लाए हाकिम अली जिस्कानी
4: 0301-399-2836।
5: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है। सुनते रहो जी FM 94।

जी हा समय कुछ दोस्तों के नाल अवां ताई पहुंचाईंदा हलंदासीं यारमंद कलोड़ा कॉलोनी लाड़काणे खां फौजी इरशाद अली महेश सर फकीर एजाज कलोड़ो डॉक्टर रिजवान अली कलोड़ो माजिद अली जतोई निसार जतोई हरसा जी गढ़ी कोरकाणी खां सूमर फकीर कोरकाणी नारा स्टाफ सखर खां एजाज अली जुणे जो मुनीब रहमान जुणे जो मुजीब रहमान जुणे जो गोठ छोटो मक्सी लॻे कंगन खां सिकंदर अली मक्सी अकबर खान मक्सी ॻोठ मोहम्मद कासिम चांडियो खां अली अकबर चांडियो मोहसिन अकबर अहसन अकबर फहद अकबर ऐं अहद अकबर शादाब चांडियो ॻोठ हसू जतोइन खां मोहम्मद मूसा जतोई यार मोहम्मद ऐं नसरुल्लाह जतोई ॻोठ कंगन खां गुलाब खान कुंभर शोएब अली ऐं ग़ुलाम रसूल कुंभर ॻोठ मोलेरणी माशी लॻे वॾनि महरनि खां ज़मीर हुसैन सोलंगी मुख़्तियार अली ज़हीर अब्बास सोलंगी ऐं नंढिड़ो वफ़ा हुसैन सोलंगी।

जी असमें प्रोग्राम रोशन सुबह जारी हूँ सारी है तुम्हारा असो साथ रो ठीक यारह वगे ती कें वो इन वक्त हलूँ पाया न्यूज़ ब्रेक की तरफ ए कमर्शल ब्रेक की तरफ वरी वापस इंदी।

0: It's 10 a.m. This time check is brought to you by
1: Fakiri Dex Ointment.
2: अब आप सुनेंगे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
3: इकराम में मुअत्तल ईरानी मीडिया मौजूद आवाज है। बहुत शहर में धमाका बुधा हुआ। अमेरिकी सेंट्रल कमांड जो चवण है तो ईरान में छह ढीह वारी कार्रवाई मुकम्मल करे वरती है। कार्रवाई जो मकसद ईरानी फौजी सलाहियत के कमजोर करण हो। विच ओभर में 50,000 अमेरिकी फौजी मौजूद है। ईरानी हमलन से अमेरिकी फौज के ऑपरेशनल सरगर्मियों को भी असर न पो है।

0: थो त अमेरिका सां मुआहिदो थी वञे। सदर ट्रंप चयो त बि मामले जी सिफारती हल लाइ तयार आहे। जेकॾहिं ईरान अमेरिका सां कयल वाइदनि तां फिरी थो त अमेरिका सदर ट्रंप हुन खे जवाबदाह बणाईंदो। कतर ईरान खिलाफ़ फौजी कार्रवाइयुनि में शामिल थियण वारनि ख़बरनि खे सख़्तीअ सां रद्द करे छॾियो। कतर ईरान खिलाफ़ न कंहिं जंग में हिसो हो न ई बणजंदो। इसराइली मीडिया जूं रिपोर्ट्स बेबुनियाद ऐं गुमराह कंदड़ आहिनि। कतरी परॾेही वज़ारत पंहिंजे बयान में चयो आहे त इसराइल जी प्रोपोगेंडा जो मक़सदु कतर जे टकियाड़े वारे किरदार ते नाकारी असरु विझणु आहे। कतर खिते में अमुन ऐं छिकताण जे ख़ात्मे लाइ पंहिंजूं सिफारती कोशिशूं जारी रखंदो। अमेरिका ईरान मुफ़ाहमती यादाश्त नाकाम बणाइण लाइ इसराइल साज़िश कई आहे। अमेरिकी नायब सदर अमेरिका ईरान मुफ़ाहमती यादाश्त नाकाम बणाइण लाइ मुहिम हलाई ऐं हुन ते वॾी रक़म ख़र्च कई। अहिड़े मुहिम बावजूदि अमेरिकी मुफ़ाहिदनि खे पहिरीं तरजीह ॾिनी वेंदी। ईरान सां तकरार जो मुस्तक़िल हल फ़ौजी कार्रवाई नाहे। इहा बि हिकु वाज़े हक़ीक़त आहे त इसराइल अमेरिका में अवामी राय जी जंग बि हाराए रहियो आहे। ईरान मुल्की इंफ्रास्ट्रक्चर ऐं बिजली घरनि ते अमेरिकी हमलनि जी सूरत में खिते जो इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह करण जी धमकी ॾेई छॾी। बाब अलमंद बंदि करण जी बि तयारी। ईरानी फ़ौज जे ख़ात्मुल नबिया हेडक्वार्टर जे तर्जुमान इब्राहिम ज़ुल्फ़िकारी चयो आहे त अबना हरमुज ईरान जे रेड लाइन आहे। अमेरिका खे मुदाख़लत करण न ॾींदासीं। ट्रंप जे धमकियुनि ते अमल कयो वियो ऐं ईरान जे बुनियादी ढांचे खे निशानो बणायो वियो त खिते जे बचियल इंफ्रास्ट्रक्चर जो वजूद न रहंदो। ईरानी फ़ौज जे तर्जुमान मजीद अलकरमुनिया चयो आहे त खिते जी मुस्लिम रियासतनि सां टकराव जो इरादो नाहे। जेकॾहिं अमेरिका जी जंग जारी रही त जंग नवनि मुआज़नि ताईं पखेड़जी वेंदी। ईरानी फ़ौज मुल्की वक़ार सलामती ऐं सरहदनि जे तहफ़ करणु ॼाणे थी। परॾेही ख़ाबरू इदारे मूजिबि ईरान बाबुलमंद बंदि करण जे हवाले सां होसीन ताईं पैगाम पहुचाए छॾियो। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जो चीन ते इलेक्शन में मुदाख़लत ऐं 22 करोड़ वोटर्स जी डेटा चोराइण जो इल्ज़ाम। डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस FBI खे चीन ख़िलाफ़ जांच जो हुकुम ॾेई छॾियो। क़ौम खे ख़िताब कंदे अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप चयो त चीन अमेरिकी चूंडनि जी डेटा हैक करण जी कोशिश करे रहियो आहे। चीन अमेरिकी सदारती चूंडनि जा नतीजा तब्दील करणु चाहे थो। 2020 जे इलेक्शन में बि चीन हथ-चिराग जी कोशिश कई हुई। चीन अमेरिकी वोटर्स जूं 22 करोड़ फाइलूं हासिल करे वरितियूं करणु चाहे थो। 2020 जे इलेक्शन में बि चीन हथ-चिराग जी कोशिश कई हुई। चीन साम्हूं अचण सां इलेक्शन सिस्टम में मौजूद खामियूं ख़तम थींदियूं।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर। आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर। होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद आई बा अख्तियार इदारो इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर। नईन मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कर रेट ते दस्तयाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट RPMG एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन ज़रिए कई वञे थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी। इरशाद ऑटोस हालाणी रोड मेहरापुर। राब्ते जे लाइ 03201800003।
3: खुशखबरी, अपनी जिल्द को दे नई ताजगी, चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ। अब फिकर छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है। गहरी सफाई और फोरी ग्लो जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे, सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार। फेशियल रेजुविनेशन, साफ तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जिल्द, जदीद टेक्नोलॉजी के साथ महफूज और मौसर स्किन केयर। नोट, खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है। आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं। पता: रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नजद रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर। 03003385569।
4: अस्सलाम वालेकुम अदा।
5: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
4: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो, छा कजे?
5: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
4: न अदा?
6: यार आजकल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरा पर एफएम 94 ही हले थो। मु पंजो दुकान खोलियो तो एफएम मेरा पर ते पब्लिसिटी कराई। कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे।
4: मुझे दुकान जी बेड हलंदी?
5: हां दा, कारोबारी इश्तिहारात, आम इतला, मिलाद, मजलिस, सालगिरह जी मुबारक, मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी।
4: अदा जल्दी कर, मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा।
6: ऑफिस जी मेरापुर एफएम 94, नज़द गर्ल्स डिग्री कॉलेज, हालानी रोड, मेरापुर।
5: राबते लाए हाकिम अली जिसकानी।
7: 03013992836।
8: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है। सुनते रहो जी एफएम 94।

0: It's 11:15 a.m.
1: This time check is brought to you by White Ish Beauty Cream, Glowing Skin Jo Raaz, a product by Biocon International Pakistan.
2: आशिक होंडा शोरूम मेहरा पर एटलेस होंडा मोटरसाइकिल पर एतमाद अख्तियार 3S डीलर आशिक होंडा मोटर्स मेहरा पर जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कल रेट ते दस्तियाब है सर्विस सेंटर एटलेस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद आशिक होंडा मोटर्स ते पंहिंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो कंप्यूटराइज जैपनी स्टेचिंग मशीन जे जरिए जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वन्य थी होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जे जेर निगरानी आशिक होंडा मोटर्स एड्रेस इंडस बाईपास नस्त रेलवे लाइन मेहरापुर राप्ती जिलाई आसिम हुसैन आराई 0307-3592120
3: खुशखबरी लेजर हेयर रिमूवल गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल अब फिक्र छोड़िए आपके शहर मेहरापुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ट जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे बाजू टांगे और पूरे जिस्म के गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए महफूज और मौसर ट्रीटमेंट बार बार वेक्स और शेविंग से निजात नरम साफ और खूबसूरत जिल्द कम वक्त बेहतरीन नतायज अब गैर जरूरी बालों की फिक्र खत्म लेजर हेयर
4: कार शोरूम ते नयन ऐं पुराणिन गाॾियुनि जी ख़रीदो फरोख कई वेंदी आहे
3: नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद खरी रोड मेहरापुर 0300-338-5569
5: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है सुनते रहो GFM 94

जी समय वापसि जेको आहे प्रोग्राम रोशन सुबुह में, ऐं रोशन सुबुह वारा प्रोग्राम ॿुधो पिया जी एफ एम 88 जे नेटवर्क तां। साईं मुंहिंजा अॼु पाण ॻाल्हि कंदासीं माकड़ जी, त माकड़ ही हिकु क़िस्म जो उॾामंदड़ हिलाल जीत आहे, ऐं हारी कुड़मीअ जो वॾे में वॾो दुश्मन जीत आहे। अव्हांखे थोरी मालूमात ॾींदासीं माकड़ जे हवाले सां, छो त जेके पुराणे दौर जा माण्हू आहिनि उन्हनि खे त ख़बर आहे त माकड़ छा आहे, पर जेके अॼोको नौजवान आहे उनखे का ख़बर कोन्हे त माकड़ छा आहे। साईं जा हिन खे ख़ासि करे ॻोठाणा माण्हू तए ते तरे या देगड़ी में भुञी बि खाईंदा आहिनि, ऐं हिन जीत में कुदरती तौर ते घणो सण बि मौजूदु हूंदो आहे, ऐं तंहिं करे हिन खे पचाइण वक़्तु गिहु तेल या मखण जी काई बि ज़रूरत न पवंदी आहे, ऐं माकड़ जॾहिं बि जिते बि ईंदी आहे पोइ उतां जा फसल खाई चट करे छॾींदी आहे, ऐं माकड़ पंहिंजे नसुल खे वधाइण में बि देरि नाहे कंदी। ऐं हाणे माकड़ मारण या भॼाइण जा जदीद औज़ार बि निकिता आहिनि। अॻु में जिते बि माकड़ ईंदी हुई उते फसल पोखूं खाई चट करे छॾींदी हुई, ऐं उते ॾुकर थी पवंदो हुयो। हिन जदीद दौर में माकड़ जीतमार दवाऊं तयारु कई वियूं आहिनि हुनजे ख़तमु करण लाइ, जिते स्प्रे ऐं इस्तेमालु करण सां माकड़ ऐं संदसि फसल खे बुनियादी तौर ते पंहिंजे हुनखे माकड़ खे मारे ख़तमु करे छॾे थी, ऐं पंहिंजो फसल सही नमूने बहितर नमूने तयारु थी वेंदो आहे। त साईं मुंहिंजा माकड़ हिलाल जीत आहे। पुराणे दौर में जॾहिं बि माकड़ ईंदी हुई त खाधी वेंदी हुई, ऐं जॾहिं बि वक़्तनि वक़्तनि माकड़ ईंदी आहे, अलाह साईं जो हिकिड़ो कुदरती सिस्टम आहे, उनखे कोई बि रोके कोन थो सघे। बहरहाल माकड़ फसल लाइ नुक़सानकारु आहे, ऐं जेकॾहिं इंसानु खाईंदो त उन लाइ हिलाल बि आहे।

साईं मुंहिंजा हिकिड़ो एहतियात जो पंहिंजो ज़रूरी आहे तव्हांखे ॿुधाइणु, ऐं तव्हां पंहिंजो कोशिशि कंदा रहो त जेके तव्हांजा ॿार नंढड़ा स्कूल वञनि था, ऐं जेके बुज़ुर्ग वॾा ॻोठ में निकिरनि था, ॿहराड़े में निकिरनि था, या अॼुकल्ह शहर में बि कुतनि जो आज़ार तमामु घणो आहे। कुते जो ॾाढणु या चक पाइण जा असांजे मुल्क में केतिरा ई वाक़िया पेश आया आहिनि, जेके माण्हुनि जे मौत जो कारण बि बणजनि था। ऐं कुते जो चकु हुजे या कुए जो चकु हुजे या वरी ॿिलीअ जो, उन्हनि जो ॾाढण या चक पाइण सां उन्हनि जे वात मां जेका गिग निकिरे थी ऐं इंसान जे जिस्म में कंहिं बि हिसे में मुतासिर उनखे करे थी, छो जो उन जे गिग में ख़तरनाक जरासीम थियनि था जेकी माण्हुनि जे मौत जो जल्दी कारण बणजनि था। अहिड़नि जानवरनि या ख़तरनाक जीतनि जे चक पाइण खां पोइ जल्दी कंहिं न कंहिं शहर जे वेझे हॉस्पिटल वञी करे पाण इलाजु कराइजे, जीअं कंहिं वॾे नुक़सान खां माण्हू पाण बची सघे। ऐं नंढनि ॿारनि खे बि उहा एहतियात हिदायत कजे त जे उहे कूअनि कुतनि ॿिलनि ऐं ॿियनि ख़तरनाक जीतनि ऐं जानवरनि सां हरगिज़ हरकत न कनि, जीअं पाण खे पोइ पछतावो न थिए।

0: रोशनी का काफिला, मंजिल की तरफ गामजन, मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर, शानदार तालीमी इमारत, प्रोफेसर कुर्बान अली मेमन, एयर कंडीशन्ड एकेडमिक ब्लॉक का इनेकाद, मेहनती मुशाक और तजुर्बेकार तदरीसी अमला, सरसब्ज बागीचा, बेहतरीन फर्नीचर, शानदार कंप्यूटर, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की लैब्स, ऑडियो और विजुअल लेक्चर सिस्टम की सहूलत, केमिस्ट्री फिजिक्स बायोलॉजी रियाजी और इंग्लिश पर खुसूसी तवज्जो, एंट्री टेस्ट के लिए मेडिकल और इंजीनियरिंग में काबिले तहसीन नतायज, खेलों का मैदान और वहां मुनक्किद होने वाले मुकाबले, तहरीर तकरीर और जहनी आजमाइश के मुकाबले, स्टडी टूर्स, अपनी आँखों के नूर बच्चियों और प्यारे बेटों की मयारी तालीम तरबियत के लिए आज ही मजह स्कूल सिस्टम मेहरापुर का विजिट करें। मजीद रابطے के लिए डॉक्टर अल्ताफ हुसैन मेमन, मैनेजिंग डायरेक्टर मजर स्कूल सिस्टम, 03000027234, निसार अहमद मेमन प्रिंसिपल मजर स्कूल सिस्टम मेहरापुर, 03013865453।
1: खुशखबरी, क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़िए, शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है बालों की जदीद और मौसर इलाज, एक्सोसोम्स एंड पीआरपी ट्रीटमेंट के साथ बालों का झड़ना कम करने में मददगार, कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए, नए बालों की निशोनुमा में मदद दे, बालों को घना और सेहतमंद बनाए, घने मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद, थरी रोड मेहरापुर, 03003385569।
2: जी स्किन डल ऐं बेरोनक लगे थी, हाणे पंहिंजी स्किन खे ॾियो हिकु नओ गिलो, पेश आहे वाइट एज ब्यूटी क्रीम, अव्हां जी स्किन खे बणाए फ्रेश सॉफ्ट ऐं ग्लोइंग, इन जो स्किन फ्रेंडली फार्मूलो ॾिए अव्हां खे रेडिएंट लुक, रोज़ानो जे इस्तेमाल सां हर क़िस्म जी स्किन जे लाइ परफेक्ट, हाणे थियो खूबसूरत थियण वधीक आसान, वाइट एज ब्यूटी क्रीम, खूबसूरती जेका चमके हर ॾींहुं, बहितरीन रिज़ल्ट हासिल करण लाइ वाइट एज ब्यूटी क्रीम सां गॾु इस्तेमाल करियो वाइट एज ब्यूटी सोप, वाइट एज ब्यूटी सोप सां मिले चमकदार निखार ताज़गी सां गॾु, वाइट एज ब्यूटी क्रीम ग्लोइंग स्किन जो राज, अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान। जिंदगी गुजारियो एतमाद सां, कुरान के समझी बुधंदा रहो, डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।
3: खुशखबरी, जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक सामू वधन बोटा पेट्रोल पंप, कोटली कबीर रोड मेहरापुर, कराची ए इस्लामाबाद जो मशहूर, डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन MA DHMS सिंध RHMP इस्लामाबाद, होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड फैमिली फिजिशियन, सीनियर लेक्चरर, नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह, हर अरबा खमीस जुमे छंछर आचर।

0: गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जी कामयाब इलाज कयो वने तो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी खारिश फट फुरड़ियों बारन में कद जो न वधण मर्दन ऐं औरतुन में वजन जो न वधण उन्हें सभिनी बीमारियुन जो कामयाब इलाज कयो वने तो राब्ते लाइ 0301-9196-851।
1: मेहरान आयरन स्टोर हालाणी होलसेल डिपो अ नेम टू बी ट्रस्टेड
2: सरिया गार्डर टीए एंगल चैनल पट्टी लोही दरवाजा सिल्वर जा चौंक सीमेंट रेती क्रेश ऐं रंग वगैरह बाजार खां बारिया दस्तयाब आहिनि।
1: हाणे अचो मेहरान आयरन स्टोर नज़्द बलोच पेट्रोल पंप नेशनल हाईवे हालाणी।
2: राब्ते लाइ प्रोप्राइटर गुलाम नबी मुगल 0300-3204-372 ऐं 0242-46-0100।
3: अस्सलाम वालेकुम अदा।
4: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
3: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो, छा कजे?
4: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
3: न अदा?
1: यार आज कल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरापुर FM 94 ही हले थो। मु पंजो दुकान खोलियो तो FM मेरापुर ते पब्लिसिटी कराई, कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे।
3: मुझे दुकान जी बेड हलंदी?
4: हां दा, कारोबारी इश्तिहारात आम इतला मिलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी।
3: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा।
1: ऑफिस जी मेरापुर FM 94 नज़्द गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालाणी रोड मेरापुर।
4: राबते लाए हाकिम अली जिस्कानी
5: 0301-399-2836।
6: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है, सुनते रहो जी FM 94।
7: बुक स्टूडियो Season 15.

हिकु मक़सद में अव्हांजी मदद ज़रूरु कंदो ऐं हरगिज़ नाकामीअ जो ख़ौफ़ दिलि में न रखिजे। जेसीं ताईं इंसानु पंहिंजे अंदर जो ख़ौफ़ ख़तमु न कंदो, तेसीं ताईं कामयाबीअ ॾांहुं हिकु बि क़दमु न वधाए सघंदो। महिनत में अज़मत आहे ऐं महिनत सां ई कामयाबी आहे, ऐं कामयाबी इंसानु हासिलु करे सघे थो। तॾहिं चवंदा आहिनि त कोशिशि ज़रूरु कजे, छो त कोशिशि कामयाबीअ जी कुंजी आहे।

जी साईं जा प्रोग्राम रोशन सुबुह जो आखिरी लम्हा आहिनि। आख़िरी लम्हनि में तव्हां जी जेका सिक आहे, प्यार आहे, मोहबत आहे, चाहत आहे, ऐं तव्हां जेको असां गॾु रहियो ॿिनि कलाकनि जो जेको सफ़र आहे उन में कुझु नाला तव्हांजा असां ताईं मौजूदु आहिनि जेके अव्हां ताईं पहुचाईंदासीं। तव्हांजा नाला तव्हांजा दोस्त ॿुधंदा त अॻो चक शहर खां नई मंगरियो बि असांखे यादि कयो ऐं कुरेशी माला सखर खां अब्दुल्ला चनो ऐं लाड़काने खां आमिर जागिराणी बलोच बि असांखे यादि कयो। दोस्तनि जी वॾी महिरबानी। मोहम्मद अज़ीज़ जरवार, वसीम जरवार मीरपुर ख़ासि खां, ऐं मीरपुर ख़ासि खां ई अज़ीज़ सोलंगी, भुट्टो सोलंगी, ऐं मीरपुर ख़ासि खां यासमीन मलिक, रेहाना ख़ान बखर खां, ऐं हाजी सोरा मंगरियो, फ़रहान मंगरियो, नज़र मोहम्मद मंगरियो, ॻोठ सचिरणो मंगरियो लॻे बकापुर खां, आसिफ अली चाचड़, वासिफ अली बुगटी लाड़काणे खां, ख़ालिक लाशारी, इक़बाल लाशारी झलोरी मीरपुर ख़ासि खां, ॻोठ ठुल जुणे जो खां, अबरार अली जुणे जो, इक़रार अली जुणे जो ऐं वकार अली जुणे जो, क़ुर्बान अली ख़ासि खिली झंडो मरी खां, ऐं असांखे यादि कयो दुआ लाड़काणे खां। सभिनी जे नां कयूं पिया जलाल चांडे जो ख़ूबसूरत नगमो गॾिजी पिया ॿुधूं।

जी सर, मुझे कुछ दोस्त जन लाइ अची वियो आहे एस एम एस ज़रिए। मोहम्मद शरीफ़ पंहिंजो छुटो आहे या भुटो आहे, हुनजी स्पेलिंग में थोरो फ़र्क़ु आहे। दरेजी बलोचिस्तान खां ऐं लाड़काणे खां आमिना बतूल बि असांखे यादि कयो।

जी समय न जलाल चांडे जे न खूसर नगमे ते प्रोग्राम रोशन सुबह जो वक्त पहुंचे पे पांजे पजणी ते पांजे मेज़बान नेमतुल्लाह जुणी जो खरींदा इजाज़त अल्लाह ने कहा।

0: आपने हरमुज में बहरी जहाजन ते फायरिंग कई त सख्त नतीजा भोगींदो मुफाहमती यादाश्ती भंजकड़ी जे जवाब में ईरान ते हमला कया वया। ईरान हाँ अमेरिका जा हमला रोकण जे काबिल नाहे रहयो। ईरान हिन वक्त भी चाहे थो त अमेरिका सां मुआहिदो थी वञे। सदर ट्रंप चयो त बे मामले जे सफारती हल लाइ तयार आहे। जेकॾहिं ईरान अमेरिका सां कयल वाइदनि तां फिरी थो त अमेरिका सदर ट्रंप उन खे जवाबदाह बणाईंदो। कतर ईरान खिलाफ़ फौजी कार्रवाइयुनि में शामिल थियण वारनि ख़बरनि खे सख़्तीअ सां रद्द करे छॾियो। कतर नाकारी असर विझण आहे। कतर खिते में अमुन ऐं छिकताण जे ख़ात्मे लाइ पंहिंजूं सिफारती कोशिशूं जारी रखंदो। अमेरिका ईरान मुफ़ाहमती यादाश्त नाकाम बणाइण लाइ इसराइल साज़िश कई आहे। अमेरिकी नायब सदर जे डी वेनस चयो आहे त इसराइली अंसरनि ईरान सां मुआहिदे ते राहतो हणण लाइ अमेरिका मलाई ऐं हुन ते वॾी रक़म ख़र्च कई। अहिड़े मुहिम बावजूद अमेरिकी मुफ़ाहिदनि खे पहिरीं तरजीह ॾिनी वेंदी। राहतो हणण लाइ अमेरिका मलाई ऐं हुन ते वॾी रक़म ख़र्च कई। अहिड़े मुहिम ते इसराइल अमेरिका में अवामी राय जी जंग बि हाराए रहियो आहे। ईरान मुल्की इंफ्रास्ट्रक्चर ऐं बिजली घरनि ते अमेरिकी हमलनि जी सूरत में खिते जो इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह करण जी धमकी ॾेई छॾी। बाब अलमंद बंदि करण जी बि तयारी। ईरानी फ़ौज जे ख़ात्मो नबिया हेडक्वार्टर जे तर्जुमान इब्राहिम ज़ुल्कारी चयो आहे त अबना हरमुज़ ईरान जे रेड लाइन आहे। अमेरिका खे मुदाख़लत करण न ॾींदासीं। ट्रंप जे धमकियुनि ते अमल कयो वियो ऐं ईरान जे बुनियादी ढांचे खे निशानो बणायो वियो त खिते जे बचियल इंफ्रास्ट्रक्चर जो वजूद न रहंदो। ईरानी फ़ौज जे तर्जुमान मजीद अलकरमुनिया चयो आहे त खिते जे मुस्लिम रियासतनि सां टकराव जो इरादो नाहे। जेकॾहिं अमेरिका जी जंग जारी रही त जंग नवनि मुआज़नि ताईं पखेड़जी वेंदी। ईरानी फ़ौज मुल्की वकार सलामती ऐं सरहदनि जे तहफ़ करणु ॼाणे थी। परॾेही ख़बरू इदारे मूजिबि ईरान बाबुल मंद बंदि करण जे हवाले सां होसीन ताईं पैगाम पहुचाए छॾियो। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जो चीन ते इलेक्शन में मुदाख़लत ऐं 22 करोड़ वोटर्स जी डेटा चोराइण जो इल्ज़ाम। डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस FBI खे चीन ख़िलाफ़ जांच जो हुकुम ॾेई छॾियो। क़ौम खे ख़िताब कंदे अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप चयो त चीन अमेरिकी चूंडनि जी डेटा हैक करण जी कोशिश करे रहियो आहे। चीन अमेरिकी सदारती चूंडनि जा नतीजा तब्दील करणु चाहे थो। 2020 जे इलेक्शन में बि चीन हथ चिराग जी कोशिश कई हुई। चीन अमेरिकी वोटर्स जूं 22 करोड़ फाइलूं हासिल करे वरितियूं आहिनि। अमेरिकी गुझा इदारा चूंडनि बाबति इंटेलिजेंस मालूमात फौरी तौर जारी कनि। तफ़सील साम्हूं अचण सां इलेक्शन सिस्टम में मौजूद खामियूं ख़तम थींदियूं।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: खुशखबरी, अपनी जिल्द को दे नई ताजगी, चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है। गहरी सफाई और फोरी ग्लो जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे, सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार। फेशियल रेजुविनेशन, साफ तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जिल्द, जदीद टेक्नोलॉजी के साथ महफूज और मौसर स्किन केयर। नोट, खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है। आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं। पता, रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नजद रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर। 0300-338-5569।
3: मेहरान आयरन स्टोर हालानी, होलसेल डिपो, अ नेम टू बी ट्रस्टेड।
4: सरिया, गार्डर, टीयर, एंगल, चैनल पट्टी, लोही दरवाजा, सिल्वर जा चौंक, सीमेंट, रेती, क्रेश ऐं रंग वगैरह बाजार खां बारिया दस्तियाब आहिनि।
3: हाणे ई अचो मेहरान आयरन स्टोर, नज़द बलोच पेट्रोल पंप, नेशनल हाईवे, हालाणी।
4: राब्ते लाइ प्रोप्राइटर गुलाम नबी मुगल, 0300-320-4372 ऐं 0242-460-1000।
5: इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद आई बा अख्तियार इदारो इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर नईन मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कर रेट ते दस्तयाब आहे सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन जरिए जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर फ्यूल एडजस्टमेंट आरपीएम जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वनिए थी होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी इरशाद ऑटोस हालानी रोड मेहरापुर राब्ते जे लाइ 0320018003
6: अस्सलाम वालेकुम अदा
7: वालेकुम अस्सलाम अदा छो परेशान आई
6: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो छा कजे
7: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
6: न अदा
8: यार आज कल शहरन तोड़े गोछन में जी मेरापुर एफएम 94 ही हले थो मो पंजो दुकान खोलियो तो एफएम मेरापुर ते पब्लिसिटी कराई कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे
6: मुझे दुकान जी बेड हलंदी
7: हां दा कारोबारी इश्तिहारत आम इतला मिलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी
6: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा
8: ऑफिस जी मेरापुर एफएम 94 नज गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर
7: राबते लाए हाकिम अली जिसकानी
9: 0301-399-2836
10: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है सुनते रहो जी एफएम 94

0: It's 11:50 a.m.
1: This time check is brought to you by White Ish Beauty Cream, Glowing Skin Jo Raaz, a product by Biocon International Pakistan. खुशखबरी, लेजर हेयर रिमूवल गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ट जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे, बाजू, टांगे और पूरे जिस्म के गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए महफूज और मौसर ट्रीटमेंट, बार बार वेक्स और शेविंग से निजात, नरम, साफ और खूबसूरत जिल्द, कम वक्त बेहतरीन नतायज। अब गैर जरूरी बालों की फिक्र खत्म लेजर हेयर रिमूवल के साथ। आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद, थरी रोड मेहरापुर, 0300-338-5569।
2: अपना शहर अपना घर मेहरापुर, और मेहरापुर की आवाज़ GAFM 94।

घिटीअ मां अचे थी गुलाबनि जी ख़ुशबू। जी हा जेके महबूब माण्हू हूंदा आहिनि उहे अगरि घिटीअ मां क्रॉस करे वञनि न त सॼी घिटी गुलाबनि जी ख़ुशबूअ सां महकजी वेंदी आहे। त तव्हां बि असांजे हिन प्रोग्राम में गुलाबनि जी ख़ुशबूअ सां थी करे शामिल थी सघो था। असांजे प्रोग्राम में शामिल थियण जे लाइ पंहिंजे मोबाइल फोन जो राइट मैसेज ऑप्शन बि हलिया वञो ऐं मारो लिखो स्पेस ॾियो, स्पेस खां पोइ लिखो पंहिंजो नालो, पंहिंजे ॻोठ ऐं शहर जो नालो लिखी करे मोकिलियो असां 888।

बेहतरीन कलाम खां पोइ कुझु दोस्तनि जा मैसेजिस आहिनि उहे बि पंहिंजे प्रोग्राम में शामिल कंदा हलूं। मोहम्मद उर्स पाण जो प्रोग्राम ॿुधी रहियो आहे ऐं हुन सां गॾु आहे शुएब अली सेठार ऐं मोहम्मद उर्स बि सेठार, ठीकु आहे, ऐं ॻोठु अलह बचायो सेठार खां ऐं शाहिद बबर जे आहे जेको आहे कलाम जी अदा जन फरमाइश कई। दादा तव्हां ॾाढा ख़ुशि नसीब आहियो, तव्हांजो मैसेज पहिरें खां पहिरियां ई शाहिद बबर जी आवाज़ में हिकिड़ो सॉन्ग प्ले करे छॾियो हुयो। हालांकि शाहिद बबर ॾाढो सुठो सिंगर आहे, मूंखे बि हुनजा सॉन्ग्स ॾाढा सुठा लॻंदा आहिनि, पर तव्हांजी त फरमाइश ऑलरेडी पूरी थी चुकी आहे। वॾी महिरबानी, तव्हां मुंहिंजे प्रोग्राम में शामिल थिया आहियो, लख कुर्ब, लख अहसान अव्हांजा, तव्हांजे लाइ खोड़ दफ़ा भलीकार। अहिड़े तरीक़े सां मोरे शहर जे गचे रोड खां असांजे प्रोग्राम में शामिल आहे मोहम्मद साहिद सूमरो, हुन सां गॾु आहे डॉक्टर जावेद अली सूमरो ऐं अदाजन चवनि था त असांखे मुमताज़ लाशरी जे आवाज़ में कलाम ॿुधायो, जेको डेडिकेट कनि था एडवोकेट मोहम्मद अली भुट्टो साहिब खे, आदिल बुगियो ऐं पंहिंजा समूरा दोस्त ऐं सभिनी लिसनर्स खे बि चवनि पिया अस्सलाम वालेकुम। त वालेकुम अस्सलाम मुंहिंजा मिठा। ऐं अदाजन लिखियो आहे त गुलाब भाई कैसे हैं आप, अदा मां ठीक ठाक, तव्हां जूं दुआऊं, ऐं चवंदा तव्हांजो प्रोग्राम ॾाढो सुठो आहे, तव्हांजो आवाज़ु ॾाढो सुठो आहे, त तमामु घणी महिरबानी मिठा, तव्हांखे असांजो आवाज़ु पसंदि आहे, तव्हांखे असांजो प्रोग्राम पसंदि आहे, हुनजे लाइ असां तमामु घणा शुक्रगुज़ार आहियूं जा। ऐं कोशिशि कयूं था तव्हांखे तव्हांजी पसंदि जो असां मुमताज़ लाशरी जे आवाज़ में सॉन्ग बि को ॿुधायूं।

मुंहिंजे मिठा साईं, ज़िंदगी खे अक्सर हिक इम्तिहान सां तशबीह ॾिनी वेंदी आहे, छो त हिन दुनिया में हर इंसान खे न मुख़्तलिफ़ हालतुनि, मुश्किलातुनि ऐं आज़माइशुनि मां गुज़रणो पवंदो आहे। जीअं इम्तिहान में शागिर्द जी क़ाबिलियत, महिनत ऐं सब्र खे परखियो वेंदो आहे न, तीअं ज़िंदगीअ में बि इंसान जे हौसले, ईमान ऐं बर्दाश्त खे परखबो आहे। ज़िंदगी में कॾहिं ख़ुशियूं मिलनि थियूं त वरी कॾहिं ॾुख ऐं तकलीफ़ूं। उहे सभु हालतूं असल में इम्तिहान जो हिसो हूंदियूं आहिनि। जेकी माण्हू सब्र, हिमत ऐं महिनत सां उन्हनि हालतुनि खे मोहं ॾिए थो, उहो कामयाबु थींदो आहे। जेॾहिं त जेको मायूस थी वञे थो, उहो ज़िंदगी जे इम्तिहान में पोइते रहिजी वञे थो। ज़िंदगी जो इम्तिहान सिर्फ़ु ॾुखनि ताईं महदूदु न आहे, पर ख़ुशियूं बि हिकु क़िस्म जो इम्तिहान अथव। जॾहिं इंसान खे कामयाबी दौलत सां इज़त मिले थी न, तॾहिं बि उहो ॾिठो वेंदो आहे त हू उन्हनि मां या उन्हनि खे कीअं इस्तेमालु करे थो। छा हू शुक्रगुज़ार बणिजे थो या गुरूर में अची वञे थो। हीउ इम्तिहान इंसान खे सेखारे थो त हू हर हालत में मज़बूत रहे, पंहिंजे मक़सदनि ते क़ाइम रहे ऐं सचाई जो साथ न छॾे। महिनत, ईमानदारी ऐं सब्र अहिड़ा औज़ार आहिनि जेके इंसान खे ज़िंदगीअ जे इम्तिहान में कामयाबु बणाइनि था। ज़िंदगी हिकु अहिड़ो इम्तिहान आहे जेको हर कंहिंखे ॾियणु लाज़मी आहे। हिन इम्तिहान में कामयाबी हासिलु करण लाइ ज़रूरी आहे त इंसान हिमत न हारे, हर मुश्किल खे सिखिया सम्झे ऐं अॻिते वधंदो रहे। अहिड़ी तरह त इंसान पंहिंजी ज़िंदगीअ खे कामयाबु ऐं बामक़सदु बणाए सघे थो।

0: आशिक होंडा शोरूम मेहरापुर एटलेस होंडा मोटरसाइकिल चोपर एटमाद अइमा अख्तियार 3S डीलर आशिक होंडा मोटर्स मेहरापुर जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कर रेट दे दस्तियाब आहे सर्विस सेंटर एटलेस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद आशिक होंडा मोटर्स ते पंहिंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो कंप्यूटराइज्ड जैपनी स्टेचिंग मशीन जे जरिए जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज्ड जापानी मशीन जरिए कई वन्य थी होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी जेर निगरानी आशिक होंडा मोटर्स एड्रेस इंडस बाईपास नस्त रेलवे लाइन मेहरापुर राप्ति जिलाई आसिम हुसैन आराई 0307-3592120
1: खूबसूरती का असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम इसमें मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रो बीड्स फॉर्मूला आपकी जिल्द को बनाए निखरी और चमकदार सिर्फ 2 दिन में डार्क स्पॉट्स को करे फेड और दे कुदरती असली ग्लो डी स्किन ब्यूटी क्रीम असली ग्लो हर दिन का शो
2: खुशखबरी जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक सामू वधन बोटा पेट्रोल पंप कोटली कबीर रोड मेहरापुर कराची इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन एम ए DHMS सिंध RHMP इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड फैमिली फिजिशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा खमीस जुमे छंछर आचर एंड सूमर ते सुबह 10 का शाम 5 बजे तक मरीजन जो इलाज कंदा आहिन हर जुमे छंछर एंड आचर ते बगैर फीस जे चेकअप कयो विंदो याद रखंदा मरीजन के दवा स्टोर दा वठनी पौंदी माहिर अमराज नक कन गलो पुरानो नजलो निछो मथे जो सूर नजर जी कमजोरी कन जो वण कन जो सूर घट बुधण में अचन शुगर ब्लड प्रेशर दिल जा मर्ज फालिज खंग टीबी मादे जी अल्सर मादे जी जलन दिली जो वधण जिगर जा मर्ज हेपेटाइटिस BC गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जी कामयाब इलाज कयो वने तो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे की खारिश फट फुरड़ियों बारन में कद जो न वधण मर्दन औरतुन में वजन जो न वधण उन्हें सभी बीमारियों जो कामयाब इलाज कयो वने तो राबते लाए 0301-2196-851
3: खुशखबरी क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं अब फिक्र छोड़िए शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है बालों की जदीद और मौसर इलाज एक्सोसोम्स एंड PRP ट्रीटमेंट के साथ बालों का झड़ना कम करने में मददगार कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए नए बालों की निशोनुमा में मदद दे बालों को घना और सेहतमंद बनाए घने मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही राबता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहरापुर 0300-3385-69

0: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
1: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز، جی اے ایف ایم 88 کی آواز،
0: جی اے ایف ایم 88 نیٹورک، سندھ کی آواز.
2: पंहिंजे ॻोठ या शहर जो नालो ऐं लिखी करे मोकिलियो असां न 8881 ते. ऐं जन दोस्तनि जा मैसेज हिन वक़्तु असांजे प्रोग्राम में आहिनि त उन्हनि जा मैसेज बि पंहिंजे प्रोग्राम में शामिलु कंदा हलंदासीं. उन सां गॾोगॾु तव्हां सां मिठियूं मिठियूं ॻाल्हियूं बि असांजूं हलंदियूं रहंदियूं ऐं तव्हांजे पसंदि जी चूंड मौसीक़ी बि तव्हांखे असां वक़्तनि ब वक़्तनि ॿुधाईंदा रहूं पिया. त असां सां गॾु आहे अॼु असांजो प्यारो भाउ आई अब्दुरहीम फ्राम सखर. ऐं अदा अब्दुरहीम स्पेशली मां तव्हांखे पंहिंजे शो में भलीकार चवां थो. ऐं मौला तव्हांखे ख़ुशि रखे, आबाद हुजो मुंहिंजा साईं. ऐं अदा जन लिखनि था, अस्सलाम वालेकुम अदा साईं, कहिड़ा हाल आहिनि? त अदा मां बिल्कुलु ठीकु ठाक आहियां. अदा जन चवनि था, उमेन त ख़ुशि हूंदा, जिते हुजो सलामत हुजो. ऐं अदा जन चवनि था त असांखे अहमद मुग़ल जो कलाम ॿुधायो. त हाज़िर मुंहिंजा मिठा साईं, अहमद मुग़ल जो कलाम तव्हांखे ज़रूरु ॿुधाईंदासीं. दिलि वॾी कयो ऐं इनशाला ताला अलाह साईं तव्हांखे ख़ुशि रखे. ऐं स्पेशली मुंहिंजी तरफ़ खां तव्हांखे पंहिंजे प्रोग्राम में भली कया त ॻोठा जी ग़ुलाम ख़ासि खेली लॻ जींदो झंडो मोरीअ खां क़ुर्बान अली ख़ासि खेली पंहिंजो प्रोग्राम ॿुधे पियो. अदा क़ुर्बान बि असांजो पुराणो लिसनर आहे ऐं अदा जन बि असांजे शो में शामिल थींदा रहंदा आहिनि. ऐं हिकु दफ़ो न काफ़ी दफ़ा मुंहिंजे हिन शो में शामिलु थींदा आहिनि. ऐं वॾी महिरबानी भाउ तव्हांखे स्पेशली मां पंहिंजे प्रोग्राम में भली कार चवां थो. मोहम्मद उर्त सेठार, शुएब अली सेठार, ॻोठ अलाह बचायो सेठार खां ऐं शाद बाबर जे कलाम जी अदा जन फरमाइश कई आहे. त महिरबानी प्यारा, अलाह सां तव्हांखे ख़ुशि रखंदो हुयो. अहिड़े ई तरीक़े सां तव्हां बि असांजे शो में शामिलु थी सघो था एस एम एस जे ज़रिए. ऐं एस एम एस करण जो तरीक़ेकार सवलो आहे, आसान आहे. पंहिंजे मोबाइल फोन जे राइट मैसेज ऑप्शन में हलिया वञो, एम आर ओ लिखो, स्पेस ॾियो, स्पेस खां पोइ लिखो पंहिंजो नालो, पंहिंजे ॻोठ या शहर जो नालो ऐं लिखी करे मोकिलियो असां 888.

मोरो जो बेहतरीन आवाज, बेहतरीन मोरो जो फनकार दिलशेर तिवणे जे आवाज में तवा के सॉन्ग बुधरायो से तवा मिठा सही तवा भी असने शो में शामिल थी सको ता बदरे ऐसे में सही समझ कण जो तरीके का थोलो आहे आसान आहे पने मोबाइल फोन जे राइट मैसेज ऑप्शन में हल्या वणो एम आर ओ लिखो स्पेस दियो स्पेस का पय लिखो पाजो नालो पाजे गोठ या शहर जो नालो ऐ लिखी करे मोकलियो असना 8881 ते

प्रोग्राम में दोस्तों मैसेजेस भी आहिनि उहे बि कॾहिं कॾहिं शामिल कंदा था हलूं त असांजो प्यारो भाउ आई अब्दुरहीम चवे थो अदा साईं तव्हांजी पहिरीं ॻाल्हि त फरमाइश मां पूरी कई आहे उमेदु तव्हांखे सुठो इहो सॉन्ग लॻो हूंदो अहमद मुगल जो ऐं अदा जन चवनि था दादा साईं खजनि जी मौसम अची वई यार तव्हां यकीन कयो ॾाढा ख़ुशि नसीब माण्हू आहियो ऐं तव्हां जेके सखर वारा दोस्त आहिनि या खैरपुर वारा जेके दोस्त आहिनि इहे इन्हनि वटि खजी तमामु घणी थींदी आहे न ऐं असां हेॾां वारा वरी पोइ इन तरफ़ वारनि ते पिया ॾिसंदा आहियूं त मन को महबूब राज़ी थी पए वॾी महिरबानी आहे मिठा ऐं अदा जन चवनि था अचो ऐं तंग खजी जेका आहे न उहा तयारु थी वई आहे यार दिलि चवे थी बिल्कुलु अचिबो पर ॾाढी डिघी हिकिड़ी मोकल ते विया हुयासीं ऐं डिघी मोकल तकरीबन ॾहनि ॾींहनि जी हुई ॾहनि ॾींहनि खां पोइ वापसि आयासीं हाणे कंपनी न छॾींदी बाबा हेॾां तोॾे अचण जे लाइ बहरहाल इहो आहे त इनशाह ज़रूरु अचिबो ऐं अगरि नसीबु हूंदो त इहे तव्हांजा ॾंग ॾोॾा असां हिते बि खाई सघूं था त अलाह साईं तव्हांखे ख़ुशि रखंदो प्यारा महिरबानी तव्हां असांखे इनवाइट कयो इहे तव्हांजूं मुहबतूं हूंदियूं आहिनि इहो तव्हांजो प्यारु हूंदो आहे हक़ीक़त इहा आहे त इहे ॾंग या खजी या खजूर या त मोरो में बि मिले पई इहा त मीरपुर में बि मिलंदी या लाड़काणे में बि मिलंदी पर इहे तव्हांजी मुहबतूं आहिनि जेको तव्हां असांखे जेको आहे प्यार मां पाण ॾे दावत ॾियो पिया उन जे लाइ असां तमामु घणा तव्हांजा शुक्रगुज़ार आहियूं त असांजे प्रोग्राम में असां गॾु आहे सोबिया चवे थी आप कुझु अपने पसंदि का सुनवा दे अच्छा सोबिया मुंहिंजी पसंदि जी अगरि तव्हां ॻाल्हि कंदा त मां ॾाढा फास्ट जेके सॉन्ग हूंदा आहिनि उहा मुंहिंजी पसंदीदा हूंदो आहे जॾहिं मां गाॾी में वेंदो आहियां त बि जेके बि मुंहिंजी लाइब्रेरी हूंदी आहे उहे तमामु तेज़ हूंदा आहिनि सॉन्ग्स मिसाल तौरु रिमैक्स त इन आहे त तव्हांखे तकरीबन मुंहिंजी पसंदि जो अंदाज़ो जेके मुंहिंजा लिसनर्स आहिनि उन्हनि खे त लॻी चुको आहे पर मां कोशिशि कंदो आहियां त हिन प्रोग्राम में पंहिंजी पसंदि खां वधीक तव्हांजी पसंदि खे अहमियत ॾियां बिल्कुलु तव्हांखे मां पंहिंजे पसंदि जो सॉन्ग ज़रूरु ॿुधाईंदुसि अस्सलामु अलैकुम भाईजान वालेकुम अस्सलाम जुमा मुबारक आपको सॉन्ग मुमताज़ मोलाई ऐं असांजा अथई शोक नवाबी ऐं पन्नू आकल खां सैयद इमदाद अली शाह अच्छा पन्नू आकल खां साईं इमदाद अली शाह साहब तव्हांखे स्पेशली मां भलीकार चवां थो मोहम्मद ताहिर लुंड ऐं ज़वार मोहम्मद बचल इहे उन सां गॾु आहिनि वॾी महिरबानी भाउ तव्हां असांजे प्रोग्राम में शामिलु थिया आहियो साईं इमदाद अली शाह साहब तव्हांजे पसंदि जो सॉन्ग प्ले कयूं था तव्हां दिलजाए कयो ऐं अलाह साईं तव्हांखे ख़ुशि रखे आबाद रखे त अहिड़े तरीक़े सां ॿिया जेके असांजा लिसनर्स आहिनि जन हाणे हाणे रेडियो सेट ऑन कयो आहे त उन्हनि खे असां ॿुधाईंदा हलूं त प्रोग्राम आहे म्यूज़िक मस्ती ऐं प्रोग्राम म्यूज़िक मस्ती सां गॾु मां तव्हांजो पंहिंजो मेज़बान गुलाब खान भेण त दोस्तनि जा मैसेजिस मुसलसल अचनि पिया उहे बि शामिलु कंदा हलूं रियाज़ अहमद पाण खे ॿुधी रहियो आहे बांदीअ मां ऐं अदा जन चवे थो अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम साईं जन चवंदा असांखे मास्तर मंज़ूर जो कलाम ॿुधायो जी मुंहिंजा मिठा साईं मास्तर मंज़ूर जो कलाम तव्हांखे ज़रूरु ॿुधाईंदासीं ॾाढा सुठा सुठा मास्तर मंज़ूर जा कलाम असांजे लाइब्रेरी में मौजूदु आहिनि ऐं उहे कलाम तव्हांखे ॿुधाईंदासीं जेके तव्हां ॿुधाई न हूंदा असांजे प्रोग्राम सां गॾु आहे केरु आहे फुलजी स्टेशन खां फौजी पठाण खान खोसो चवनि था अस्सलामु अलैकुम प्यारा भाउ गुलाब खान सदाई ख़ुशि हुजो वालेकुम अस्सलाम अदा पठाण खान खोसा साहिबु ख़ुशि हुयो ठीकु हुयो त भई सही आहे तव्हांजी अदा जन चवनि था लैला सुमर जो प्रोग्राम ॿ कलाक कॾहिं हलंदो अबा लैला जो प्रोग्राम हिन वक़्तु असां वटि ऑनियर थी रहियो आहे जेको तव्हां ॿुधंदा आहियो राति जो 9 वॻे खां वठी 10 वॻे ताईं 2 कलाक जो बि हुनखे टाइम मिली वेंदो परेशान न थियो वॾी महिरबानी मिठा तव्हां असांजे शो में शामिलु थिया आहियो सॉन्ग आहे ज़बरदस्त मुमताज़ मोलाई जी आवाज़ में अचो त हुनखे इंजॉय कयूं

ऐं इन सॉन्ग खां पोइ जेको आहे न न्यूज़ ऐं कमर्शियल ब्रेक जो टाइम आहे, तेसिताईं तव्हां ही सॉन्ग इंजॉय कयो, न्यूज़ ॿुधो ऐं केॾांहुं बि न वञिजो, ॿुधंदा रहंदा सिर्फ़ GFM 88 नेटवर्क।

0: छहें ॾींहं में हिकु ॿिए ते हमला जारी। ॾखण ईरान में अमेरिकी हमलनि में 7 शहरी शहीद। अमेरिकी फ़ौजी मुख्य रोड रस्तनि ऐं रेलवे निज़ाम खे बि निशानो बणायो। ईरानी इख़्तियारनि मूजिबि हरोज़ा सूबे में 5 पुलनि ते हमला कया विया। बंदर अब्बास में रिहायशी इमारत खे बि निशानो बणायो वियो। जवाब में ईरान जो शाम जे शहर अल तनफ में अमेरिका जे स्पेशल ऑपरेशन कमांड सेंटर ते हमिलो। ईरानी बाज़ार ऐं इनकलाब जो चवणु आहे त शहीद ईरानी फ़ौजियुनि जो बदिलो वठंदे केतिरा ई फ़ौजी मारे छॾिया आहिनि। रेडार सिस्टम ऐं केतिरा ई अमेरिकी हेलीकॉप्टर्स बि तबाह कया। कुवैत, बहरैन ऐं बहरैन में अमेरिकी फ़ौजी हंधनि ते निशानो बणायो वियो। कतरी वज़ारत पारां अमेरिकी मिज़ाइल्स ऐं ड्रोन्स तबाह करण जी दावा।
1: चीन ऐं पाकिस्तान अमेरिका ईरान विच में ॻाल्हियुनि जी बहालीअ जो मुतालबो कनि था। चीनी परॾेही वज़ारत पारां जारी कयल बयान में चयो वियो आहे त धुरियूं जंगबंदीअ जे मुफ़ाहमती यादाश्त नामे जी पासदारी कनि ऐं वाइदनि ते अमल कनि।
0: अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जो चीन ते इलेक्शन में मुदाख़लत ऐं 22 करोड़ वोटर्स जी डेटा चोराइण जो इल्ज़ाम। डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस ऐं FBI खे चीन ख़िलाफ़ जांच जो हुकुम ॾेई छॾियो। क़ौम खे ख़िताब कंदे अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप चयो त चीन अमेरिकी चूंडुनि जी डेटा हैक करण जी कोशिश करे रहियो आहे। चीन अमेरिकी सदारती चूंडुनि जा नतीजा तब्दील करणु चाहे थो। 2020 जी इलेक्शन में बि चीन हथ चुराइण जी कोशिश कई हुई। चीन अमेरिकी वोटर्स जूं 22 करोड़ फाइल्स हासिल करे वरितियूं आहिनि। अमेरिकी गुझाइदारा चूंडुनि बाबति इंटेलिजेंस मालूमात फौरी तौर जारी कनि। तफ़सील साम्हूं अचण सां इलेक्शन सिस्टम में मौजूदु खामियूं ख़तमु थींदियूं।
1: नंदो में क़ौमी अवामी तहरीक पारां मुतहद ऐं मज़बूत सिंध रैली। बदीन खे पाणी ॾियो ऐं प्रिया कुमारीअ जे आज़ाद करियो जा नारा। अॻवाणनि चयो त पोखाई जी मुंद में पाणी लमका सुकी रहियो आहे, पाणी फराहम कयो वञे। प्रिया कुमारी समेत सभई अॻवा थियल ॿार बाज़ियाब कराया वञनि। मीरपुर माथेलो में PP शहीद भुट्टो पारां प्रिया कुमारी ऐं ॿियनि ॿारनि जी बाज़ियाबीअ लाइ एहतजाज। IG सिंध खां प्रिया कुमारी ऐं ॿियनि ॿारनि जो अॻवा थियण जी बाज़ियाब जो मुतालबो।

0: कराची के मुख्तलिफ इलाकों में रोड हादसों में बजना फौत कोरंगी बिलाल चोरंगी वे मोटरसाइकिल स्लिप थे सबब अब्दुल अहद फौत यूनिवर्सिटी रोड से वॉटर टैंकर के टक्कर में मोटरसाइकिल सवार सद आसिफ फौत लाश अस्पताल मुंतकिल।
1: खुशखबरी, क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़िए, शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है बालों की जदीद और मौसर इलाज एक्सोसोम्स एंड पीआरपी ट्रीटमेंट के साथ बालों का झड़ना कम करने में मददगार, कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए, नए बालों की निशोनुमा में मदद दे, बालों को घना और सेहतमंद बनाए। घने मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद खरी रोड मेहरापुर 03003385 69।

0: ऐं कालम में मौजूद आहिनि। फौजी भाइरनि लाइ ख़ुसूसी रियायत हूंदी। राब्ते लाइ फौजी अब्दुल करीम 0301-54-431-456 ऐं तौकीर अहमद 0306-16-23-793।
1: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।
2: इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद आई बा अख्तियार इदारो। इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर नईन मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कर रेट ते दस्तयाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन जरिए जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट RPMG एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वनिए थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी जेर निगरानी। इरशाद ऑटोस हालानी रोड मेहरापुर राब्ते जे लाए 0320180003।
1: खुश खबरी अपनी जिल्द को दे नई ताजगी चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ। अब फिक्र छोड़िए आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है। गहरी सफाई और फोरी ग्लो जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार। फेशियल रेजुविनेशन साफ तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जिल्द जदीद टेक्नोलॉजी के साथ महफूज और मौसर स्किन केयर। नोट खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है। आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं। पता रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक नजद रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहरापुर 0300-338-5569। खुशखबरी लेजर हेयर रिमूवल गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल। अब फिक्र छोड़िए आपके शहर मेहरापुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ट जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे बाजू टांगे और पूरे जिस्म के गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए महफूज और मौसर ट्रीटमेंट। बार बार वेक्स और शेविंग से निजात नरम साफ और खूबसूरत जिल्द कम वक्त बेहतरीन नतायज। अब गैर जरूरी बालों की फिक्र खत्म लेजर हेयर रिमूवल के साथ। आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक नजद रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहरापुर 0300-338-5569।
2: आशिक होंडा शोरूम मेहरापुर एटलस होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद आई बा अख्तियार 3S डीलर आशिक होंडा मोटर्स मेहरापुर जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कयल रेट ते दस्तयाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। आशिक होंडा मोटर्स ते पंहिंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो कंप्यूटराइज जैपनी स्टेचिंग मशीन जे जरिए जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट RPMG एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वने थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जे जेर निगरानी। आशिक होंडा मोटर्स एड्रेस इंडस बाईपास नस्त रेलवे पर राब्ते जे लाइ आसिम हुसैन आराई 0307-359-2120।
1: खुश खबरी अपनी जिल्द को दे नई ताजगी चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ। अब फिक्र छोड़िए आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है। गहरी सफाई और फोरी ग्लो जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार। फेशियल रेजुविनेशन साफ तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जिल्द जदीद टेक्नोलॉजी के साथ महफूज और मौसर स्किन केयर। नोट खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है। आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं। पता रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक नजद रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहरापुर 0300-338-5569।
3: अस्सलाम वालेकुम अदा।
4: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
3: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो, छा कजे?
4: अदा दुकान जी मशहूरी कराई अथई?
3: न अदा।
0: यार आज कल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरा पर FM 94 ही हले थो। मु पंजो दुकान खोलियो तो FM मेरा पर ते पब्लिसिटी कराई। कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे।
3: मुझे दुकान जी बेड हलंदी?
4: हाँ दा, कारोबारी इश्तेहारात, आम इतला, मिलाद, मजलिस, सालगिरह जी मुबारक, मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी आए।
3: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा।
0: ऑफिस जी मेरापुर FM 94 नज़ गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर।
4: राबते लाए हाकिम अली जिसकानी
5: 03013992836।
6: अपना शहर अपना घर मेहराबपुर और मेहराबपुर की आवाज GA FM 94।

0: It's 12:15 p.m.
1: This time check is brought to you by
2: D Skin Beauty Cream, Asli Glow Har Niya Josho, a product by Biocon International Pakistan. खुशखबरी, लेजर हेयर रिमूवल गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ट जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे, बाजू, टांगे और पूरे जिस्म के गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए महफूज और मौसर ट्रीटमेंट, बार बार वेक्स और शेविंग से निजात, नरम, साफ और खूबसूरत जिल्द, कम वक्त बेहतरीन नतायज। अब गैर जरूरी बालों की फिक्र खत्म लेजर हेयर रिमूवल के साथ। आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नजद रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर, 0300-338-5569।
3: अपना शहर, अपना घर, मेहरापुर, और मेहरापुर की आवाज GAFM 94।

0: चढ़ के तुझसे अब
1: जी गाल त रही परे पर अजकल असा जको टिकटॉक ते दिसूं पिया न वो सवाए झेड़े खां भी कुछ भी कोने को कें के धमकी देनी आए कें के दाबो देनो आए कें के जको आए पान खां नीचो दिखाणो आए त इने जे करे मां स्पेशली पांजे तरफ खां तमा सबनी के चंदस तमा पांजे बचन की जी तरबियत तमा खुद कयो टिकटॉक न करे

गुलाम हुसैन मुराणी जी खूबसूरत आवाज है ऐं तव्हां एंजॉय करे रहा आहियो इन सॉन्ग के चवे थो असांजे दिल ते तव्हांजी हुकूमत जीअं वणई तीअं हलाए असांखे थींदो बि ईअं ई आहे जंहिंजे दिल ते अगरि कंहिंजी हुकूमत हूंदी आहे त पोइ उन जी मर्ज़ी हूंदी आहे हुनखे कहिड़े तरीक़े सां हलाए त असांजे प्रोग्राम में बि उन्हनि माण्हुनि जा मैसेज शामिलु कयूं था जंहिंजी असांजे दिलि ते बि हुकूमत आहे। इरशाद अली पंहिंजो प्रोग्राम ॿुधे पियो मनहड़ो चोदगीअ खां ऐं अदा इरशाद मनहड़े में असांजा काफ़ी दोस्त आहिनि ऐं मनहड़ो ॾाढो भलड़ो शहर आहे मुहबती माण्हुनि जो शहर आहे। मिठा महिरबानी तव्हांजी मुंहिंजा भाउ चए थो अस्सलाम वालेकुम ऐं मुमताज़ मोलाई जी कलाम जी अदा जन फरमाइश कई आहे त मुंहिंजा मिठा प्यारा मुमताज़ मोलाई ऑलरेडी मां प्ले कयो आहे ऐं इनशाला ताला कोशिशि कंदुसि त मां तव्हांखे मुमताज़ मोलाई जो कलाम ॿुधायां।

আমি আহি চেবেতো ভাই সাহাব কেসে ও পেগামি শামেলায় শাজিয়া শেখ যে সং জি আচ্ছা ইনি আহে তে চেবে তো আদি আহে সানি শাজিয়া শেখ চেবে থি ভাই সাহাব কেসে ও তা মা বিলকুল ঠিক ঠাক আয়া আই এদা জে আদি চেবে থি তা সং কে নিগত নাজ জো কলাম বুধরায়ো ऐं बाजी सुमेरा जे बारे में पुछे बि त बाजी सुमेरा कॾहिं ईंदी त बाजी सुमेरा बिल्कुलु ॾाढो ज़बरदस्त शो कंदी आहे ऐं बाजी सुमेरा इनशाला ज़रूरु असांजे नेटवर्क ते वापसि ईंदी। तव्हां परेशान न थियो, दिलि वॾी कयो, तव्हां जी एफ एम नेटवर्क अहिड़े तरीक़े सां ॿुधंदा रहो। ऐं मूंखे लॻे थो तव्हां पीरगोट खां लिखी रहिया आहियो मुंहिंजे शो में, अॻ में बि ॿ टे दफ़ा तव्हांजा मैसेज आया आहिनि, इहो मुंहिंजो अंदाज़ो आहे। बाक़ी ॿियो मैसेज जेको तव्हां कयो हुन में ॿुधाइजो तव्हां किथां खां लिखी रहिया आहियो।

रियाज़ अहमद बांधी मां पंहिंजे प्रोग्राम ॿुधे पियो चए थो अस्सलाम अलैकुम वालेकुम अस्सलाम मुंहिंजा मिठा चवे थो असांखे मास्टर मंज़ूर जो कलाम ॿुधायो यार बिल्कुलु मास्टर मंज़ूर जो कलाम तव्हांखे ॿुधाईंदासीं ॿियो मैसेज अदाजन कयो आहे महिरबानी प्यारा तव्हां असांजे प्रोग्राम में शामिल थिया आहियो हुनजे लाइ तमामु घणियूं महिरबानियूं लख कुर्ब लख अहसान असांजे प्रोग्राम में शामिल आहे सखर खां आई अब्दुल रहीम अहमद मुगल जे कलाम जी अदाजन फरमाइश खे बि अदा साईं मां तव्हांजे पसंदि जो कलाम प्ले करे छॾियो आहे मोला तव्हांखे ख़ुशि रखे आबाद हुजो खिलंदा रहो मुस्कराईंदा रहो ऐं तव्हां समेत जेके असांजा लिसनर्स आहिनि उहे समूरा अहिड़े तरीक़े सां खिलंदा मुस्कराईंदा रहनि अहिड़े तरीक़े सां असांजे शो में बि शामिल थींदा रहनि।

खुशखबरी, जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक साम्हूं वधण बोटा पेट्रोल पंप कोटड़ी कबीर रोड मेरापुर कराची ऐं इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमण एमए डीएचएमएस सिंध आरएचएमपी इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट ऐं फैमिली फिज़िशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा खमीस जुमे छंछर आचर ऐं सूमर ते सुबुह 10 खां शाम 5 वॻे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदा आहिनि। हर जुमे छंछर ऐं आचर ते बग़ैर फीस जे चेकअप कयो वेंदो। याद रखंदा, मरीजन के दवा स्टोर तां वठणी पवंदी। माहिरे अमराज़ नक कन गलो पुराणो नज़लो निछो मथे जो सूर नज़र जी कमज़ोरी कन जो वण कन जो सूर घटि ॿुधणु।

0: मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन के कामयाब इलाज कयो वने तो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी खारिश फट फुरड़ियों बारन में कद जो न वधण मर्दन ऐं औरतुन में वजन जो न वधण उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वने तो राबते लाइ 0301-2196-851।
1: खुशखबरी, क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़िए, शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है बालों की जदीद और मौसर इलाज। एक्सोसोम्स एंड पीआरपी ट्रीटमेंट के साथ बालों का झड़ना कम करने में मददगार, कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए, नए बालों की निशोनुमा में मदद दे, बालों को घना और सेहतमंद बनाए। घने मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही राबता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद, थरी रोड मेहरापुर, 0300-338-5569। रोशनी का काफिला मंजिल की तरफ गामजन, मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर, शानदार तालीमी इमारत, प्रोफेसर कुर्बान अली मेमन, एयर कंडीशन्ड एकेडमिक ब्लॉक का इनेकार, मेहनती मुशाक और तजुर्बेकार तदरीसी अमला, सरसब्ज बागीचा, बेहतरीन फर्नीचर, शानदार कंप्यूटर, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की लैब्स, ऑडियो और विजुअल लेक्चर सिस्टम की सहूलत, केमिस्ट्री फिजिक्स बायोलॉजी रियाजी और इंग्लिश पर खुसूसी तवज्जो, एंट्री टेस्ट के लिए मेडिकल और इंजीनियरिंग में काबिल तहसीन नतायज, खेलों का मैदान और वहां मुनक्किद होने वाले मुकाबले, तहरीर तकरीर और जहनी आजमाइश के मुकाबले, स्टडी टूर्स, अपनी आँखों के नूर बच्चियों और प्यारे बेटों की मयारी तालीम और तरबियत के लिए आज ही मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर का विजिट करें। मजीद राबते के लिए डॉक्टर अल्ताफ हुसैन मेमन, मैनेजिंग डायरेक्टर मजहर स्कूल सिस्टम, 0300-002-7234। निसार अहमद मेमन, प्रिंसिपल मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर, 0301-386-5453।
2: मेहरान आयरन स्टोर हालानी होलसेल डिपो, अ नेम टू बी ट्रस्टेड।
3: सरिया गार्डर टीयर एंगल चैनल पट्टी लोही दरवाजा सिल्वर जा चौंक सीमेंट रेती क्रेश आई रंग वगैरह बाजार का बारियत दस्तियाब आई।
2: हाँ अचो मेहरान आयरन स्टोर नज़्द बलोच पेट्रोल पंप नेशनल हाईवे हालानी।
3: राबते लाए प्रोपराइटर गुलाम नबी मुगल, 0300-320-4372-0242-460100।
4: खूबसूरती जो असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम, इन में मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रो बीड्स फार्मूलो अवाजी स्किन के बनाए निखरी और चमकदार, सिर्फ बिन डीहन में डार्क स्पॉट्स के करे खत्म, दिए कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर डी जो शो। अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
5: अस्सलाम वालेकुम अदा।
6: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
5: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो, छा कजे?
6: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
5: न अदा।
7: यार आज कल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरापुर एफएम 94 ही हले थो, मु पंजो दुकान खोलियो तो एफएम मेरापुर ते पब्लिसिटी कराई, कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे।
5: मुझे दुकान जी बेड हलंदी?
6: हां अदा, कारोबारी इश्तिहारात आम इतला मिलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी।
5: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा।
7: ऑफिस जी मेरापुर एफएम 94 नज़्द गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर।
6: राबते लाए हाकिम अली जिसकानी,
8: 0301-399-2836।
9: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है, सुनते रहो जी एफएम 94।
10: ओए
11: टंटन, प्रमोशन लेटर,
10: कंग्रेचुलेशंस।
11: थैंक यू।
10: वाओ
11: बेबी, बैंगलोर।
10: आई होप यू सेड नो।
11: नो, मैं नो क्यों बोलूंगी?
10: हां मेरा क्या होगा, एज इन हमारा क्या होगा?
11: बाबा तुम्हारे हमारे की बात नहीं है, तुम्हें पता तो है ये प्रमोशन मुझे कितनी मुश्किल से मिली है। आई हैव टू गो टू बैंगलोर।
10: अगर तुमने डिसाइड कर लिया तो फिर मुझसे पूछने क्यों आई हो?
11: हेलो, मैं पूछने नहीं आई हूँ, मैं बताने आई हूँ। आई डोंट हैव टू आस्क यू एनीथिंग और मैं जा रही हूँ बैंगलोर। व्हाटएवर।
10: लिसन बेबी,
11: डोंट टॉक टू मी।

0: तो तुम बैंगलोर कब जा रही हो?
1: मैं बैंगलोर नहीं जा रही, बैंगलोर जाना कैंसिल।
0: तो मैं क्या बैंगलोर में क्या करूंगा? बैंगलोर तो तुम जा रही हो।
1: मैं नहीं जा रही बैंगलोर, और तुम भी नहीं जा रहे हो। कोई बैंगलोर नहीं जा रहा।
0: यार तुम लड़ रही हो।
1: Listen, you're not going to Bangalore and no trouble me now. सुबह से रो रही हूँ मैं।
0: और my fault ना?
1: और क्या? सुबह से रोए जा रही हूँ।
0: अरे मैं हर बार तो रोती
1: हूँ। You don't care about my feelings only. So I don't want to talk.
0: चलो हम दोनों साथ में।
1: You idiot. You stupid.
2: माण्हू थोरे फ़ाइदे जे लाइ पंहिंजी इज़त विञाए वेहनि था, पर अहिड़ो फ़ाइदो बेकार हूंदो आहे। छाकाणि त इज़त विञाइण खां पोइ माण्हू अंदरूनी तौर बि बेचैन रहंदो आहे। इज़तदार ज़िंदगी असल जेका ख़ुशी आहे न, उहा आहे न इज़तदार ज़िंदगी में ई मिले थी। उन खां अलावा इज़त जो तालुक़ु ख़ुदि एतमादीअ सां बधल आहे। जेको माण्हू पंहिंजी इज़त करे थो, उहो ॿियनि खां बि इज़त हासिलु करे थो। अहिड़ो इंसान कॾहिं बि ग़लति रस्ते ते न हलंदो आहे, छो त खेसि ख़बर हूंदी आहे त संदसि हर अमल संदसि सुञाणप आहे। इज़त इंसान जो असल ज़ेवर अथव, उनखे बचाइणु हर फर्ज़ जी ज़िमेवारी आहे। जेकॾहिं असां चाहियूं था त समाज बहितर बणिजे न, त हर हिक खे पंहिंजी इज़त सां गॾु ॿियनि जे इज़त जो बि ख़्यालु रखणो पवंदो। मुंहिंजा मिठा साईं, मुंहिंजे प्ले लिस्ट में हिकिड़ो सॉन्ग आहे, ॾाढो ज़बरदस्तु आहे। अछो त हुनखे बि गॾु गॾु इंजॉय कंदा हलूं।

मुझे मिठा सही मोहब्बत इंसान की दिल जो वो पाक सच्चो एहसास है जो दुनिया के हर खुशी का कीमती होंद है। मोहब्बत रुगो के एक शख्स से लागापिल ना है पर वह एक अड़ी वसी जज्बे जो नालो है जो इंसान के इंसान से इंसान के पांजे रब से इंसान के समूरी कायनात से गंढे तो। मोहब्बत की असल माना है सच्चाई खुलूस और कुर्बानी। जदे इंसान कैंसा सच्ची मोहब्बत करे तो उन खुशी में पांजी खुशी समझे तो उन दुखन के पांजा दुख समझे तो। अड़ी मोहब्बत में को भी मतलब या लालच शामिल ना है होंगी बल्कि वह सिर्फ दिल की सच्चाई से बदल होंगी है। मोहब्बत इंसान की जिंदगी के खूबसूरत बनाए थी। वह नफरत हसद कावड़ जड़न मनफी जज्बन के न खत्म करे थी। दिल में नरमी सुकून पैदा करे थी। जै दिल में मोहब्बत होंगी है वह इंसान बेन सा हमदर्दी रहम शफकत से पेश इंदो है। अड़े मानू से हर को मोहब्बत कह अव इस्लाम में भी मोहब्बत के वही अहमियत दिनी वही है। अल्लाह पाक इंसान के पान में मोहब्बत भाईचारे इतिहाद से रहने जो हुक्म दिनो है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी जिंदगी मोहब्बत रहम शफकत जो बेहतरीन मिसाल है। पान दुश्मन से मोहब्बत नरमी से पेश इंदा हुआ। मोहब्बत सिर्फ लफ्जन तीन महदूद ना होंगी मुझे साई नहीं होजन घुर्जे पर अमलन में भी नजर अचान घुर्जे। वालदेन से मोहब्बत उस्ताद से इज्जत दोस्तन से वफादारी समाज से खैर ख्वाही वे सब मोहब्बत जहाँ मुख्तलिफ रूप अव जडे असे अमलन जरिए मोहब्बत जो इजहार कह तदें हकीकी माना में पाक जज्बो बनी वी है।

0: ਸੋਲਰ ਐਂਡ ਬੈਟਰੀ ਤੇ
1: आशिक होंडा शोरूम मेहरापुर एटलेस होंडा मोटरसाइकिल चुपर एटमात अइमा अख्तियार 3S डीलर आशिक होंडा मोटर्स मेहरापुर जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कयल रेट ते दस्तियाब आहे सर्विस सेंटर एटलेस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद आशिक होंडा मोटर्स ते पंहिंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो कंप्यूटराइज जैपनी स्टेचिंग मशीन जे जरिए जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वन्य थी होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी जैर निगरानी आशिक होंडा मोटर्स एड्रेस इंडस बाईपास नस्त रेलवे लाइन मेहरापुर राप्ती जिला आसिम हुसैन आराई 0307 3592120

0: कॉलम में मौजूद आहिन फौजी बायरन लाए खुसूसी रियायत होंदी राबते लाए फौजी अब्दुल करीम 0301-54-31-456 तौकीर अहमद 0306-16-23-793
1: इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद आई बा अख्तियार इदारो इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर नईन मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कर रेट ते दस्तयाब आहे सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद इरशाद ऑटोस ते पेंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज्ड जैपनीज टेस्टिंग मशीन जरिए जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर फ्यूल एडजस्टमेंट आरपीएमजी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वनी थी होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी जेर निगरानी इरशाद ऑटोस हालानी रोड मेहरापुर राबते जे लाए 0320-18-00-003
2: अब आपकी खूबसूरती का फैन वाइट एज ब्यूटी क्रीम

0: तो मेरा फैन।
1: व्हाइट एज ब्यूटी क्रीम 5-डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा, विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फॉली एब्जॉर्ब हो जाएं, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाएं, आपको दे बेटा निखरा निखरा चेहरा। व्हाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। व्हाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: खुशखबरी, अपनी जिल्द को दे नई ताजगी, चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ। अब फिकर छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है। गहरी सफाई और फोरी ग्लो जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे, सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार। फेशियल रेजुविनेशन, साफ तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जिल्द, जदीद टेक्नोलॉजी के साथ महफूज और मौसर स्किन केयर। नोट, खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है। आज ही अपनी अपॉइंटमेंट करवाएं। पता, रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नजद रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर। 0300-335-69।
3: अस्सलाम वालेकुम अदा।
4: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
3: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो, छा कजे?
4: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
3: न अदा?
5: यार आजकल शहरन तोड़े गोछन में जी मेरापुर FM 94 ही हले थो। मु पंजो दुकान खोलियो तो FM मेरापुर ते पब्लिसिटी कराई, कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे।
3: मुझे दुकान जी बेड हलंदी?
4: हां दा, कारोबारी इश्तिहारात, आम इतला, मिलाद, मजलिस, सालगिरह जी मुबारक, मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी।
3: अदा जल्दी कर, मुखे बुंजी एड्रेस बुदा।
5: ऑफिस जी मेरापुर FM 94, नज़द गर्ल्स डिग्री कॉलेज, हालानी रोड, मेरापुर।
4: राबते लाए हाकिम अली जिसकानी।
6: 0301-399-2836।

0: It's 1:15 p.m.
1: This time check is brought to you by White Ish Beauty Cream, Glowing Skin Jo Raaz, a product by Biocon International Pakistan. खुशखबरी, लेजर हेयर रिमूवल गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ट जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे, बाजू, टांगे और पूरे जिस्म के गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए महफूज और मौसर ट्रीटमेंट, बार बार वेक्स और शेविंग से निजात, नरम, साफ और खूबसूरत जिल्द, कम वक्त बेहतरीन नतायज। अब गैर जरूरी बालों की फिक्र खत्म लेजर हेयर रिमूवल के साथ। आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नजद रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर, 0300-338-5569।
2: अपना शहर, अपना घर, मेहरापुर, और मेहरापुर की आवाज GAFM 94।

खुशखबरी। क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़िए, शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है बालों की जदीद और मौसर इलाज, एक्सोसोम्स एंड पीआरपी ट्रीटमेंट के साथ बालों का झड़ना कम करने में मददगार, कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए, नए बालों की निशोनुमा में मदद दे, बालों को घना और सेहतमंद बनाए। घने मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही राबता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद, थरी रोड मेहरापुर, 03003385 69।

0: एलोवेरा फैन
1: व्हाइट एज ब्यूटी क्रीम 5 डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फुली एब्जॉर्ब हो जाएं, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाएं, आपको दे बेताब निखरा निखरा चेहरा। व्हाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। व्हाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: खुशखबरी, जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक सामूं वधण बोटा पेट्रोल पंप कोटड़ी कबीर रोड मेरापुर कराची इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन एमए डीएचएमएस सिंध आरएचएमबी इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड फैमिली फिजिशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा खमीस जुमे छंछर आचर सूमर

0: पुराणो नज़लो निछो मथे जो सूर नज़र जी कमजोरी कन जो वण कन जो सूर घट ॿुधण में अचणु शुगर ब्लड प्रेशर दिल जा मर्ज़ फालिज खंघ टीबी मादे जी अल्सर मादे जी जलन दिली जो वधण जिगर जा मर्ज़ हेपेटाइटिस बी सी गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बग़ैर ऑपरेशन जे कामयाब इलाज कयो वञे थो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी ख़ारिश फट फुरड़ियूं ॿारनि में कद जो न वधण मर्दन ऐं औरतुनि में वज़न जो न वधण उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वञे थो राब्ते लाइ 0301-9196-851
1: अस्सलाम वालेकुम अदा
2: वालेकुम अस्सलाम अदा छो परेशान आई
1: अदा नओ दुकान खोलियो अथम पर हले ही न तो छा कजे
2: अदा दुकान जी मशवरी कराई अथई
1: न अदा
3: यार आजकल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरापुर एफएम 94 ही हले थो मु पंजो दुकान खोलियो त एफएम मेरापुर ते पब्लिसिटी कराई कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे
1: मुझे दुकान जी बेड हलंदी
2: हां अदा कारोबारी इश्तिहारात आम इतला मिलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी
1: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा
3: ऑफिस जी मेरापुर एफएम 94 नज़ गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर
2: राबते लाए हाकिम अली जिसकानी
4: 0301-399-2836
5: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है सुनते रहो जी एफएम 94

0: अब आप सुनेंगे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज़।
1: केसीआर वजह बनू जे मुख्तलिफ इलाइकन में ऑपरेशन कया वा। चौबीह कलाक दौरान ऑपरेशन दौरान चौवीह खारजी दहशतगर्द वटां हथियार ऐं बारूदी मवाद मिलियो आहे। दहशतगर्द मासूम शहरनि जे कतलनि में बि मुलविज़ हुआ।

सऊदी अरब पाकिस्तान जी रेड लाइन आहे सऊदी ते हमलो पाकिस्तान ते हमलो समझो वेंदो पाकिस्तान जी सियासी ऐं अस्करी क़यादत ईरानी क़यादत खे आगाह करे छॾियो ख़बरू इदारे मौजूदु पाकिस्तान जी आला सियासी ऐं अस्करी क़यादत ईरानी क़यादत सां ॻाल्हि ॿोल कई आहे ईरानी क़यादत खे आगाह कयो वियो आहे त हुसैन सऊदी अरब ते हमला वधाया त पाकिस्तान दिफ़ाई मुआहिदे तहत सऊदी अरब जी मदद करण ते मजबूर थी वेंदो मदद तलब करण ते पाकिस्तान सऊदी अरब सां गॾु हूंदो पाकिस्तानी क़यादत धुरिन खे मुतमिन करण जी कोशिश करे रही आहे यमन सां लॻंदड़ सऊदी सरहद ते पाकिस्तानी फ़ौजी जवान मुक़ररु थियल आहिनि हज़ारे पाकिस्तानी फ़ौजी ऐं एयरफोर्स जो हिकु स्क्वाडन सऊदी अरब में मुक़ररु आहे पाकिस्तान ऐं सऊदी अरब गुज़िरियल साल दिफ़ाई मुआहिदो कयो हो।

0: अमेरिका जा ईरान ते छह ढीं भी मिजाइल हमला फुलन ए बिजली घर के निशानो बनाया। अमेरिकी हमलों के नतीजे में सत शहरी शहीद केतरा जख्मी। ईरानी फोर्ट बंदर अब्बास दां इंदर विंदर रस्तन रेलवे ट्रैक्स ए पुलन के तबाह कर छो। बुशर लोरस्ट अमेरिकी सेंटका मूजिब ईरान के दिफाई ए नेवल निजाम के निशानो बनाया वो।
1: अमेरिकी हमलों के जवाब में ईरान जा ओमान बहरीन कुवैत शाम कतर ए इराक में जवाबी हमला अमेरिकी फौजी अड्डन दिफाई निजाम के निशानो बनाने की दावा। पासदार इनकलाब मौजूद बहरीन में अमेरिकी हेलीकॉप्टर्स ए जासूस जहाजन के निशानो बनाया है। शाम में भी अमेरिकी फौजी कमांड के निशानो बनाया वो। कतर ओमान कुवैत ए इराक में भी अमेरिकी अड्डन के मिजाइल एंड ड्रोन जरिए निशानो बनाया वो है जै सबब अमेरिकी दिफाई सलाहियत तबाह थी है।

0: ऐं कालम में मौजूद आहिनि। फ़ौजी ॿाहिरनि लाइ ख़ुसूसी रिआयत हूंदी। राब्ते लाइ फ़ौजी अब्दुल करीम 0301-54-31-456 ऐं तौकीर अहमद 0306-16-23-793।
1: इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर। होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद ऐं बा अख़्तियार इदारो इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर। नईं मोटरसाइकिल जी सेल कंपनीअ जे मुक़रर कयल रेट ते दस्तियाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया, जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनीअ जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स ख़ुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज्ड जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए, जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन ज़रिए कई वञे थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी। इरशाद ऑटोस हालाणी रोड मेहरापुर। राब्ते जे लाइ 0320-18-00-003।
2: खुशखबरी, अपनी जिल्द को दे नई ताजगी, चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ। अब फिकर छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है। गहरी सफाई और फोरी ग्लो जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे, सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार। फेशियल रेजुविनेशन, साफ तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जिल्द, जदीद टेक्नोलॉजी के साथ महफूज और मौसर स्किन केयर। नोट, खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है। आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं। पता, रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नजद रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर। 0300-338-5569।
3: मेहरान आयरन स्टोर हालाणी, होलसेल डिपो, अ नेम टू बी ट्रस्टेड।
4: सरिया, गार्डर, टीयर, एंगल, चैनल पट्टी, लोही दरवाजा, सिल्वर जा चौंक, सीमेंट, रेती, क्रेश ऐं रंग वग़ैरह बाज़ार खां बारिया दस्तियाब आहिनि।
3: हाणे ई अचो मेहरान आयरन स्टोर, नज़्द बलोच पेट्रोल पंप, नेशनल हाईवे, हालाणी।
4: राब्ते लाइ प्रोप्राइटर गुलाम नबी मुगल 0300-320-4372 ऐं 0242-460100।
5: अस्सलाम वालेकुम अदा।
6: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
5: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो, छा कजे?
6: अदा दुकान जी मशहूरी कराई थई
5: न अदा?
3: यार आज कल शहरन तोड़े गोठन में जीए मेरापुर FM 94 ही हले थो। मु पंजो दुकान खोलियो तो FM मेरापुर ते पब्लिसिटी कराई। कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे।
5: मुझे दुकान जी बेड हलंदी?
6: हां अदा, कारोबारी इश्तिहारात, आम इतला, मिलाद, मजलिस, सालगिरह जी मुबारक, मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी।
5: अदा जल्दी कर, मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा।
3: ऑफिस जी मेरापुर FM 94, नज गर्ल्स डिग्री कॉलेज, हालाणी रोड, मेरापुर।
6: राबते लाए हाकिम अली जिसकानी
7: 0301-399-2836।
8: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है। सुनते रहो जी FM 94।

सरकार कजा से पहले

0: This program is the sole property of Central Productions, Pakistan Broadcasting Corporation, Islamabad. Piracy in this regard is illegal.
1: It's 2:15 p.m.
2: This time check is brought to you by
3: D Skin Beauty Cream, Asli Glow Har Niya Josho, a product by Biocon International Pakistan.
4: खुशखबरी, लेजर हेयर रिमूवल गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ट जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे, बाजू, टांगे और पूरे जिस्म के गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए महफूज और मौसर ट्रीटमेंट। बार बार वेक्स और शेविंग से निजात, नरम, साफ और खूबसूरत जिल्द, कम वक्त बेहतरीन नतायज। अब गैर जरूरी बालों की फिक्र खत्म लेजर हेयर रिमूवल के साथ। आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नजद रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर, 0300-338-5569।
5: अपना शहर, अपना घर, मेहरापुर, और मेहरापुर की आवाज GAFM 94।

0: खुशखबरी, क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़िए, शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है बालों की जदीद और मौसर इलाज, एक्सोसोम्स एंड पीआरपी ट्रीटमेंट के साथ बालों का झड़ना कम करने में मददगार, कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए, नए बालों की निशोनुमा में मदद दे, बालों को घना और सेहतमंद बनाए। घने मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही राबता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद, खरी रोड मेहरापुर, 03003385569। जी स्किन डल ऐं बेरोनक लगे थी, हाणे पंहिंजी स्किन खे ॾियो हिकु नओं गिलो। पेश आहे वाइट एज ब्यूटी क्रीम, अव्हां जी स्किन खे बणाए फ्रेट ऐं जो स्किन फ्रेंडली फार्मूलो, ॾी अव्हां खे रेडिएंट लुक रोज़ानो जे इस्तेमाल सां, हर क़िस्म जी स्किन जे लाइ परफेक्ट। हाणे थियो खूबसूरत थियण वधीक आसान, वाइट एज ब्यूटी क्रीम, खूबसूरती जेका चमके हर ॾींहुं। बहितरीन रिज़ल्ट हासिल करण लाइ वाइट एज ब्यूटी क्रीम सां गॾु इस्तेमाल करियो वाइट एज ब्यूटी सोप। वाइट एश ब्यूटी सोप सा मिले चमकदार निखार ताजगी सा गड। वाइट एश ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन जो राज। अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
1: जहां उम्मीद के दिए जलते हैं,
2: रोशनी का काफिला मंजिल की तरफ गामजन। मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर, शानदार तालीमी इमारत, प्रोफेसर कुर्बान अली मेमन, एयर कंडीशन्ड एकेडमिक ब्लॉक का इनेकार, मेहनती मुशाक और तजुर्बेकार तदरीसी अमला, सरसब्ज बागीचा, बेहतरीन फर्नीचर, शानदार कंप्यूटर, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की लैब्स, ऑडियो और विजुअल लेक्चर सिस्टम की सहूलत, केमिस्ट्री फिजिक्स बायोलॉजी रियाजी और इंग्लिश पर खुसूसी तवज्जा, एंट्री टेस्ट के लिए मेडिकल और इंजीनियरिंग में काबिले तहसीन नतायज, खेलों का मैदान और वहां मुनक्किद होने वाले मुकाबले, तहरीर तकरीर और जहनी आजमाइश के मुकाबले, स्टडी टूर्स, अपनी आँखों के नूर बच्चियों और प्यारे बेटों की मयारी तालीम तरबियत के लिए आज ही मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर का विजिट करें। मजीद राबते के लिए डॉक्टर अल्ताफ हुसैन मेमन, मैनेजिंग डायरेक्टर मजहर स्कूल सिस्टम, 03000002734। निसार अहमद मेमन, प्रिंसिपल मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर, 03013865453।
3: आशिक होंडा शोरूम मेहरापुर, एटलस होंडा मोटरसाइकिल चौपर एतमाद, मां अख्तियार 3S डीलर, आशिक होंडा मोटर्स मेहरापुर, जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कयल रेट ते दस्तियाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर, सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स, आशिक होंडा मोटर्स ते पंहिंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो। कंप्यूटराइज्ड जैपनी स्टेचिंग मशीन जे जरिए जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर, फ्यूल एडजस्टमेंट एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वने थी। होंडा जे कॉलेज जैर निगरानी, आशिक होंडा मोटर्स, एड्रेस इंडस बाईपास नस्त रेलवे लाइन मेहरापुर, राब्ते जे लाइ आसिम हुसैन आराई, 03073592120।
4: खुशखबरी, जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक साम्हूं वधण बोटा पेट्रोल पंप, कोटड़ी कबीर रोड मेहरापुर, कराची ऐं इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन एमए डीएचएमएस सिंध आरएचएमबी इस्लामाबाद, होम्योपैथिक कंसल्टेंट ऐं फैमिली फिजिशियन, सीनियर लेक्चरर, नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज।

0: सिंध हुकूमत पारां कराची जी यूनिवर्सिटी रोड जे मेच डे ट्रैफिक लेन जल्द खोलण जो फैसलो। सीनियर वजीर शर्जी ना मेमन जी सदारत हेठ रेड लाइन बीआरटी मनसूबे बाबत इजलास। मनसूबे जी मुख़्तलिफ़ हिसनि ते जारी तालीमाती सरगर्मियुनि जो जाइज़ो वरितो वियो। शर्जी ना मेमन चयो त रेड लाइन बीआरटी कराची वासियुनि लाइ इनकलाबी सफ़री मनसूबो आहे। रेड लाइन बीआरटी जो कम जल्द मुकमिल करण तरजीह आहे। सिंध हुकूमत शहरनि खे जदीद सफ़री सहूलियतूं ॾियण लाइ कदम खणी रही आहे।
1: डीजल 40 रुपया, पेट्रोल 10 रुपया फी लीटर महांगो थियण जो इम्कान। ओगरा पेट्रोल जे अघनि में रदोबदल बाबति समरी वज़ारत ॾांहुं मोकिले छॾी। ज़रिए मूजिबि आलमी मार्केट में कचो तेल महांगो थियण बाद ओगरा पेट्रोल अघनि में वाधे जूं सिफ़ारिशूं तयार कयूं आहिनि। हतमी फ़ैसिलो हुकूमत कंदी।
2: आप सुन रहे थे जीएफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।

0: It's 3:15 p.m.
1: This time check is brought to you by White Ish Beauty Cream, Glowing Skin Jo Raaz, a product by Biocon International Pakistan.
2: अपना शहर अपना घर मेहराबपुर और मेहराबपुर की आवाज GAFM 94।
1: खुशखबरी, लेजर हेयर रिमूवल गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहराबपुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ट जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे, बाजू, टांगे और पूरे जिस्म के गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए महफूज और मौसर ट्रीटमेंट, बार बार वेक्स और शेविंग से निजात, नरम, साफ और खूबसूरत जिल्द, कम वक्त बेहतरीन नतायज। अब गैर जरूरी बालों की फिक्र खत्म लेजर हेयर रिमूवल के साथ। आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज्द रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, खरी रोड, मेहराबपुर, 03003385 69।

खुशखबरी, क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़िए, शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है बालों की जदीद और मौसर इलाज, एक्सोसोम्स एंड पीआरपी ट्रीटमेंट के साथ बालों का झड़ना कम करने में मददगार, कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए, नए बालों की निशोनुमा में मदद दे, बालों को घना और सेहतमंद बनाए। घने मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद, थरी रोड मेहरापुर, 03003385 69।

0: मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जी कामयाब इलाज कयो वने तो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी खारिश फट फुरड़ियों बारन में कद जो न वधण मर्दन ऐं औरतुन में वजन जो न वधण उन्हें सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वने तो राबते लाइ 0301-2196-851
1: अस्सलाम वालेकुम अदा।
2: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
1: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो, छा कजे?
2: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
1: न अदा?
3: यार आजी कल शहरन तोड़े गोठन में जीए मेरा पर एफएम 94 ही हले थो। मो पंजो दुकान खोलियो तो एफएम मेरा पर ते पब्लिसिटी कराई। कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली नथी चवे।
1: मुझे दुकान जी बेड हलंदी?
2: हां दा, कारोबारी इश्तिहारात आम इतला मिलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी।
1: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा।
3: ऑफिस जी मेरापुर एफएम 94 नर्द गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर।
2: राबते लाए हाकिम अली जिस्कानी
4: 0301-399-2836।
5: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है। सुनते रहो जी एफएम 94।

हिकु ग़रीब थी चवे थो मौला ॾे ढिजरे बि ॿनीअ जो आहे अठ पुट आहिनि रोज़ी मस इज़त जी ॾेढ लख किथां आणिया।

0: आसम जी।
1: अब आप सुनेंगे जीए एफएम नेटवर्क पर।
2: चीन पाकिस्तान जो एतमाद जोगो ऐं मुख़लिस दोस्त आहे। चीन जे जी मौजूदा सीड़पकारी सीपेक टू ॾांहुं अहम कदम आहे। इस्लामाबाद में बीटूबी कॉन्फ्रेंस खे ख़िताब कंदे वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ चयो आहे त चीन हर मुश्किल वक़्त में पाकिस्तान जो साथ ॾिनो आहे। ॿिन्ही मुल्कनि में सीड़पकारी बि वधी आहे। सऊदी अरब पाकिस्तान जी रेड लाइन आहे। सऊदीअ ते हमिलो पाकिस्तान ते हमिलो समझो वेंदो। पाकिस्तान जी सियासी अस्करी क़यादत ईरानी क़यादत खे आगाह करे छॾियो। काबुल इदारे मूजिबि पाकिस्तान जी आला सियासी अस्करी क़यादत ईरानी क़यादत सां ॻाल्हि ॿोल कई आहे। ईरानी क़यादत खे आगाह कयो वियो आहे त हुसिन सऊदी अरब ते हमला वधाया त पाकिस्तान दिफ़ाई मुआदे तहत सऊदी अरब जी मदद करण ते मजबूर थी वेंदो। मदद तलब करण ते पाकिस्तान सऊदी अरब सां गॾु हूंदो। पाकिस्तानी क़यादत धुरियुनि खे मुतमइन करण जी कोशिश करे रही आहे। यमन सां लॻंदड़ सऊदी सरहद ते पाकिस्तानी फ़ौजी जवान मुक़रर थियल आहिनि। हज़ारे पाकिस्तानी फ़ौजी ऐं एयरफोर्स जो हिकु स्क्वाड्रन सऊदी अरब में मुक़रर आहे। पाकिस्तान ऐं सऊदी अरब गुज़िरियल साल दिफ़ाई मुआहिदो कयो हो।

0: अमेरिका जा ईरान ते छहें ॾींहं बि मिज़ाइल हमला पुलनि ऐं बिजली घरनि खे निशानो बणायो। अमेरिकी हमलनि जे नतीजे में 7 शहरी शहीद, केतिरा ई ज़ख़्मी। ईरानी फौज बंदर अब्बास ॾांहुं ईंदड़ वेंदड़ रस्तनि, रेलवे ट्रेक्स ऐं पुलनि खे तबाह करे छॾियो। बू शहर, लोरिस्तान ऐं ॿियनि शहरनि में बिजली घरनि, पुलनि, नेवल ऐं फौजी अॾनि खे निशानो बणायो वियो। गुलिस्तान सूबे में ईरान ऐं रूस खे रेल ज़रिए ॻंढींदड़ पुल खे बि अमेरिका तबाह करे छॾियो। अमेरिकी सेंटकॉम मूजिबि ईरान जे दिफ़ाई ऐं नेवल निज़ाम खे निशानो बणायो वियो। अमेरिकी हमलनि जे जवाब में ईरान जा ओमान, बहरैन, कुवैत, शाम, कतर ऐं इराक में जवाबी हमला। अमेरिकी फौजी अॾनि ऐं दिफ़ाई निज़ाम खे निशानो बणाइण जी दावा। पासदारनि ऐं इनकलाब मूजिबि बहरैन में अमेरिकी हेलीकॉप्टर ऐं जासूस जहाज़नि खे निशानो बणायो आहे। शाम में बि अमेरिकी फौजी कमांड खे निशानो बणायो वियो। कतर, ओमान, कुवैत ऐं इराक में बि अमेरिकी अॾनि खे मिज़ाइल ऐं ड्रोन ज़रिए निशानो बणायो वियो आहे, जंहिं सबबि अमेरिकी दिफ़ाई सलाहियत तबाह थी आहे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जो चीन ते इलेक्शन में मुदाखलत ऐं 22 करोड़ वोटर्स जी डेटा चोराइण जो इल्ज़ाम। डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस ऐं FBI खे चीन ख़िलाफ़ जांच जो हुकुम मिले छॾियो। क़ौम खे ख़िताब कंदे अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप चयो त चीन अमेरिकी चूंडुनि जी डेटा हैक करण जी कोशिश करे रहियो आहे। चीन अमेरिकी सदारती चूंडुनि जा नतीजा तब्दील करणु चाहे थो। 2020 जी इलेक्शन में बि चीन हथ चुरांद जी कोशिश कई हुई। चीन अमेरिकी वोटर्स जूं 22 करोड़ फाइल्स हासिल करे वरितियूं आहिनि। अमेरिकी गुझा इदारा चूंडुनि बाबति इंटेलिजेंस मालूमात फौरी तौर जारी कनि। तफ़सील साम्हूं अचण सां इलेक्शन सिस्टम में मौजूद खामियूं ख़तम थींदियूं। KP जे इलाइक़े बनू में सिक्योरिटी फोर्सिस जो ऑपरेशन, 24 ख़ारजी दहशतगर्द मारिजी विया। ISPR मूजिबि बनू जे मुख़्तलिफ़ इलाइक़नि में ऑपरेशन कया विया। 24 कलाकनि दौरान ऑपरेशन दौरान 24 ख़ारजी दहशतगर्द मारिजी विया आहिनि। दहशतगर्दनि वटां हथियार ऐं बारूदी मवाद मिलियो आहे। दहशतगर्द मासूम शहरनि जे क़तल में बि मुलविज़ हुआ। सदर आसिफ अली ज़रदारी, वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ ऐं घरू वज़ीर मोहसिन नक़वी पारां ख़ारजनि खे जहनुम भेड़ो करण ते फोर्सिस खे भेटा पेश। एटमी प्रोग्राम पाकिस्तान जी बका जो ज़ामिन आहे। आईनी ऐं कानूनी मामला धरणा ॾियण सां हल नाहिन थींदा। एहतजाज कंदड़नि खे ॻाल्हियूं करणु घुर्जनि। वज़ीर आज़म जे सलाहकार राणा सनाउला चयो आहे त मुल्क में वॾनि तरक़ियाती मनसूबनि जो क्रेडिट नून लीग ॾांहुं वञे थो। हाणे बि तरक़ियाती कम नून लीग ई करे रही आहे। वॾे वज़ीर जी सदारत हेठि सोलर सिस्टम मनसूबे बाबति इजलास। मुराद अली शाह पारां सोलर सिस्टम जी शफ़ाफ़ विरासत यकीनी बणाइण जी हिदायत। इजलास खे ब्रीफिंग ॾींदे ॿुधायो त 2,75,000 खानदाननि खे मुफ़्त सोलर सिस्टम फराहम कयो वेंदो। 18 अरब 20 करोड़ ऐं 60 लख रुपया ख़र्च थींदा। मुराद अली शाह चयो त हीउ मनसूबो रुगो बिजली न पर ग़रीब खानदाननि जी ज़िंदगी बहितर बणाईंदो। पुठिते पयल इलाइक़नि में रहंदड़ माण्हुनि खे मनसूबे में तरजीह ॾिनी वञे। सिंध हुकूमत पारां कराचीअ जे यूनिवर्सिटी रोड जे मिक्स्ड ट्रैफिक लेन खे जल्द खोलण जो फ़ैसिलो। सीनियर वज़ीर शजीलना मेमन जी सदारत हेठि रेड लाइन BRT मनसूबे बाबति इजलास। मनसूबे जे मुख़्तलिफ़ हिसनि ते जारी तामीराती सरगर्मियुनि जो जाइज़ो वरितो वियो। शजीलना मेमन चयो त रेड लाइन BRT कराचीअ वासियुनि जे लाइ इनकलाबी सफ़री मनसूबो आहे। रेड लाइन BRT जो कमु जल्द मुकमल करणु तरजीह आहे। सिंध हुकूमत शहरनि खे जदीद सफ़री सहूलियतूं ॾियण जे लाइ क़दम खणी रही आहे। डीज़ल 40 ऐं पेट्रोल 10 रुपया फी लीटर महांगो थियण जो इम्कान। ओगरा पेट्रोल जे अघ में रदो बदल बाबति समरी वज़ारत ॾांहुं मोकिले छॾी। ज़रियनि मूजिबि आलमी मार्केट में कचो तेल महांगो थियण बाद ओगरा पेट्रोल अघनि में वाधि जूं सिफ़ारिशूं तयार कयूं आहिनि। हतमी फ़ैसिलो हुकूमत कंदी। चूहर जमाली भरिसां पुलिस जो ॾुहारनि सां मुक़ाबिलो। हिकु अहलकार शहीद, हिकु ज़ख़्मी। ॻोठ मजीद ओठो में पुलिस जी कार्रवाई दौरान मुबैना तौर ॾुहारनि पुलिस ते फायरिंग कई। गोलियूं लॻण सबबि अहलकार वाजिद सुमरो शहीद ऐं ग़ुलाम मुस्तफ़ा चाबड़ो ज़ख़्मी थियो। ॾुहारी वाकिए बाद फरार थी विया।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज़।
2: खुशखबरी, अपनी जिल्द को दे नई ताजगी, चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है। गहरी सफाई और फोरी ग्लो जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे, सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार। फेशियल रेजुविनेशन, साफ तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जिल्द, जदीद टेक्नोलॉजी के साथ महफूज और मौसर स्किन केयर। नोट, खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है। आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं। पता, रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नजद रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर, 0300-338-5569।
3: इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर, होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद आई बा अख्तियार इदारो। इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर, नईन मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कर रेट ते दस्तयाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया, जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन जरिए, जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट, RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वनिए थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी जेर निगरानी। इरशाद ऑटोस, हालाणी रोड मेहरापुर, राब्ते जे लाइ 0320180003।

0: It's 4:15 p.m.
1: This time check is brought to you by
2: D Skin Beauty Cream, Asli Glow, Har Niya Josho, a product by Biocon International Pakistan. खुशखबरी, लेजर हेयर रिमूवल गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ट जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे, बाजू, टांगे और पूरे जिस्म के गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए महफूज और मौसर ट्रीटमेंट। बार बार वेक्स और शेविंग से निजात, नरम, साफ और खूबसूरत जिल्द, कम वक्त, बेहतरीन नतायज। अब गैर जरूरी बालों की फिक्र खत्म लेजर हेयर रिमूवल के साथ। आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, खरी रोड, मेहरापुर, 0300-338-5569।
3: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है। सुनते रहो जी एफ एम 94।

खुशखबरी, जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक सामू वदन बोटा पेट्रोल पंप कोटली कबीर रोड मेरा पर कराची इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन एम ए डी एच एम एस सिंध आर एच एम पी इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड फैमिली फिजिशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा खमीस जुमे छंछर आचर।

0: वठनी पौंदी मायरे अमराज नक कन गलो पुरानो नज़लो निछो मथे जो सूर नजर जी कमजोरी कन जो वहण कन जो सूर घट बुधण में अचण शुगर ब्लड प्रेशर दिल जा मर्ज फालिज खंग टीबी मादे जी अल्सर मादे जी जलन दिली जो वधण जिगर जा मर्ज हेपेटाइटिस बी सी गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जी कामयाब इलाज कयो वञे थो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी खारिश फट फुरड़ियों बारन में कद जो न वधण मर्दन ऐं औरतुन में वज़न जो न वधण उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वञे थो राब्ते लाइ 0301-2196-851
1: आशिक होंडा शोरूम मेहरापुर एटलस होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद ऐं मां अख्तियार 3S डीलर आशिक होंडा मोटर्स मेहरापुर जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल कंपनीअ जे मुकरर कयल रेट ते दस्तियाब आहे सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे होंडा कंपनीअ जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद आशिक होंडा मोटर्स ते पंहिंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो कंप्यूटराइज जैपनी स्टैचिंग मशीन जे ज़रिए जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन ज़रिए कई वञे थी होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी आशिक होंडा मोटर्स एड्रेस इंडस बाईपास नस्त रेलवे लाइन मेहरापुर राब्ते जे लाइ आसिम हुसैन आराई 0307-359-2120
2: खुशखबरी क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं अब फिक्र छोड़िए शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है बालों की जदीद और मौसर इलाज एक्सोसोम्स एंड PRP ट्रीटमेंट के साथ बालों का झड़ना कम करने में मददगार कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए नए बालों की निशोनुमा में मदद दे बालों को घना और सेहतमंद बनाए घने मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहरापुर 0300-338-5569
3: खूबसूरती का असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम इसमें मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रो बीड्स फॉर्मूला आपकी जल्द को बनाए निखरी और चमकदार सिर्फ दो दिन में डार्क स्पॉट्स को करे फेड और दे कुदरती असली ग्लो D-Skin Beauty Cream. Asli Glow, हर दिन का शो

अगर कंहिं बि दोस्त खे पोस्ट ज़रिए मेमोरी कार्ड घुराइणो हुजे उन लाइ बि राब्तो कंदा। उन खां अलावा असां टैप वारी कैसेट खे बि मेमोरी कार्ड में तब्दील करे ॾींदा आहियूं।

जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 मिंटन ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।

0: ਆਸਿਆ ਵਾਕੇ ਗੁੱਲਾ ਆਓ ਬਾ
1: ਰੁਲਾ ਛੀ ਰਾਜਨ ਕੇ।

सऊदी अरब पाकिस्तान की रेड लाइन आए सऊदी ते हमलो पाकिस्तान ते हमलो समझो वेंदो पाकिस्तान की सियासी एस करे क्यादत ईरानी क्यादत के आगाह करे छो खबरदारे मुझे पाकिस्तान की आला सियासी एस करी क्यादत ईरानी क्यादत से गाल बोल कई है ईरानी क्यादत के आगाह किया है हुसैन सऊदी अरब ते हमला बधाया था पाकिस्तान दिफाई माहिरे तहत सऊदी अरब की मदद करते मजबूर थी वेंदो मदद तलब करते पाकिस्तान सऊदी अरब से गड हों पाकिस्तानी क्यादत धुरियन के मुतमिन करने की कोशिश कर रही है यमन सा लगातार सऊदी सरहद ते पाकिस्तानी फौजी जवान मुकर्र थियल हजारे पाकिस्तानी फौजी एयरफोर्स जो एक स्क्वाड्रन सऊदी अरब में मुकर्र है पाकिस्तान सऊदी अरब गुजर साल दिफाई माहिदो कयो हो। अमेरिका जा ईरान ते छह डी भी मिसाइल हमला पुलन पिछली घर के निशानों बढ़ाया अमरीकी हमलों के नतीजे में अठ शहरी शहीद वी जख्मी ईरानी पोर्ट बंदर अब्बास डां ईंदड़ वेंदड़ रस्तन रेलवे ट्रैक्स पुलन के तबाह कर छो वो शहर लोरिस्तान बेन शहर में बिजली घर पुलन नेवल फौजी अड्डन के निशानों बढ़ाया वो पुलिस्तान सूबे में ईरान रूस के रेल जरिए गंढीदड़ पुल के भी अमरीका तबाह कर छो अमरीकी सेंटका मूजिब ईरान की दिफाई नेवल निजाम के निशानों बढ़ाया वो अमरीकी हमलों के जवाब में ईरान जा उमान बहरेन कतर इराक में जवाबी हमला अमरीकी फौजी अड्डन दिफाई निजाम के निशानों पैण की दावा पासदार इनकलाब मूजिब उर्दन में हमले के नतीजे में अमरीकी वेड़ाक जहाज तबाह थे उमान में अमरीका के जदीद रेडार सिस्टम के तबाह किया वो शाम में भी अमरीका जो कमांड सेंटर तबाह किया है जैसे नतीजे में केतरा ही अमरीकी फौजी भी मारजी वियारानी हमले में बिजली निजाम मुतासर थे की तस्दीक कर छी अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जो चीन ते इलेक्शन में मुदाखलत 22 करोड़ वोटर्स की डेटा चुराने जो इल्ज़ाम नेशनल इंटेलिजेंस एफबीआई के चीन खिलाफ जांच जो हुक्म कौम के खिताब कर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप अमरीकी गुचाए इदारा चूंडन बाबत इंटेलिजेंस मालूम फौरी तौर जारी कन चीन की सदर ट्रंप के इल्ज़ाम के रद्द कर छो चीनी पढ़ाई वजारत मूजिब चीन के अमरीकी चूंडन में मुदाखलत करण में दिलचस्पी नथो रखे इल्ज़ाम जो मकसद चीन के बदनाम करना है।

इलाके बनू में सिक्योरिटी फोर्सेज ऑपरेशन चौवी खारजी दहशतगर्द मारजी व्या आई एस पी आर मूजिब बनू के मुख्तलिफ इलाक में ऑपरेशन क्या व्या चौवी कलाक दौरान चौवी खारजी दहशतगर्द मारजी व्या दहशतगर्दन वटा हथियार ए बारूदी मवाद मिलो है दहशतगर्द मासूम शहरी के कदम में भी मुलविस व्या सदर आसिफ अली जरदारी वजीर आजम शहबाज शरीफ ए घरू वजीर मोहसिन नकवी पारा खारजियन के जहनुम भीड़ो करण ते फोर्सेज के भेटा पेश।

0: एटमी प्रोग्राम पाकिस्तान के पका जो जामिन है। आईनी ए कानूनी मामला धरना डेण से हल ना एहतजाज कदड़ कर घुर्जन। वजीर आजम के सलाहकार राना सनावला मुल्क में वन तरक्याती मनसूबों को क्रेडिट नून लीग डां वे तो हाने भी तरक्याती कम नून लीग ही कर रही है। वडे वजीर की सदारत हेठ सोलर होम सिस्टम मनसूबे बाबत इजलास। मुराद अली शाह पारा सोलर सिस्टम की शफाफ विरासत यकीनी बनने की हिदायत। इजलास के ब्रीफिंग देते बुधा वो तो 1,75,000 खानदान के मुफ्त सोलर होम सिस्टम फराम किया। 18 अरब 20 करोड़ 60 लख रुपया खर्च थन्दा। मुराद अली शाह मनसूबो रुगो बिजली न पर गरीब खानदान की जिंदगी बेहतर बनाई। पुठते पयल इलाक में रहदड़ मान के मनसूबे में तरजीह डी वे।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर। होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद आई बा अख्तियार इदारो इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर। नईन मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कर रेट ते दस्तयाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन जरिए जैमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वनी थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी इरशाद ऑटोस हालानी रोड मेहरापुर। राब्ते दे लाए 0320180003।
3: रोशनी का काफिला मंजिल की तरफ गामजन। मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर शानदार तालीमी इमारत। प्रोफेसर कुर्बान अली मेमन एयर कंडीशन्ड एकेडमिक ब्लॉक का इनेकार। मेहनती मुशाक और तजुर्बेकार तदरीसी अमला। सरसब्ज बागीचा बेहतरीन फर्नीचर शानदार कंप्यूटर फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की लैब्स ऑडियो और विजुअल लेक्चर सिस्टम की सहूलत। केमिस्ट्री फिजिक्स बायोलॉजी रियाजी और इंग्लिश पर खुसूसी तवज्जो। एंट्री टेस्ट के लिए मेडिकल और इंजीनियरिंग में काबिल तहसीन नतायज। खेलों का मैदान और वहां मुनक्किद होने वाले मुकाबले तहरीर तकरीर और जहनी आजमाइश के मुकाबले स्टडी टूर्स। अपनी आँखों के नूर बच्चियों और प्यारे बेटों की मयारी तालीम तरबियत के लिए आज ही मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर का विजिट करें। मजीद राबते के लिए डॉक्टर अल्ताफ हुसैन मेमन मैनेजिंग डायरेक्टर मजहर स्कूल सिस्टम 03000027234। निसार अहमद मेमन प्रिंसिपल मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर 03013865453।
4: मेहरान आयरन स्टोर हालानी होलसेल डिपो अ नेम टू बी ट्रस्टेड।
5: सरिया गार्डर टीयर एंगल चैनल पट्टी लोही दरवाजा सिल्वर जा चौंक सीमेंट रेती क्रेश आई रंग वगैरह बाजार का बार या दस्तयाब आई।
4: हाँ यचो मेहरान आयरन स्टोर नज़्द बलोच पेट्रोल पंप नेशनल हाईवे हालानी।
5: राबते लाए प्रोपराइटर गुलाम नबी मुगल 03003204372 0242460100।

0: कॉलम में मौजूद आहिनि फौजी भाइरनि लाइ ख़ुसूसी रियायत हूंदी। राब्ते लाइ फौजी अब्दुल करीम 0301-5431-456 ऐं तौकीर अहमद 0306-1623-793।
1: अस्सलाम वालेकुम अदा।
2: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
1: अदा नओ दुकान खोलियो अथम पर हले ही न तो, छा कजे?
2: अदा दुकान जी मशवरी कराई अथई?
1: न अदा।
0: यार अॼुकल्ह शहरन तोड़े गोठन में जीअं मीरापुर FM 94 ई हले थो, मूं पंहिंजो दुकान खोलियो त FM मीरापुर ते पब्लिसिटी कराई। कारोबार अहिड़ो कामयाब वियो जो एड बंदि कराइण ते दिल्ली नथी चवे।
1: मुंहिंजे दुकान जी बेड हलंदी?
2: हा अदा, कारोबारी इश्तिहारात, आम इतला, मीलाद, मजलिस, सालगिरह जी मुबारक, मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइज़िंग हलंदी।
1: अदा जल्दी कर, मुखे मुंहिंजी एड्रेस ॿुधायो।
0: ऑफिस जी मीरापुर FM 94, नज़ गर्ल्स डिग्री कॉलेज, हालाणी रोड, मीरापुर।
2: राब्ते लाइ हाकिम अली जिस्कानी
3: 0301-399-2836।

0: It's 5:15 PM.
1: This time check is brought to you by
2: D Skin Beauty Cream. Asli Glow Har Niya Josho. A product by Biocon International Pakistan. खुशखबरी, लेजर हेयर रिमूवल गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ट जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे, बाजू, टांगे और पूरे जिस्म के गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए महफूज और मौसर ट्रीटमेंट, बार बार वेक्स और शेविंग से निजात, नरम, साफ और खूबसूरत जिल्द, कम वक्त बेहतरीन नतायज। अब गैर जरूरी बालों की फिक्र खत्म लेजर हेयर रिमूवल के साथ। आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नजद रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर, 03003385569।

खुशखबरी, जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक साम्हूं वधण बोटा पेट्रोल पंप कोटड़ी कबीर रोड मेरापुर कराची ऐं इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमण एमए डीएचएमएस सिंध आरएचएमपी इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट ऐं फैमिली फिज़िशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा ख़मीस जुमे छंछर आचर ऐं

0: मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जी कामयाब इलाज कयो वने तो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी खारिश फट फुरड़ियों बारन में कद जो न वधण मर्दन ऐं औरतुन में वजन जो न वधण उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वञे थो राब्ते लाइ 0301-9196-8151।
1: क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़िए, शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है बालों की जदीद और मौसर इलाज एक्सोसोम्स एंड पीआरपी ट्रीटमेंट के साथ बालों का झड़ना कम करने में मददगार कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए नए बालों की निशोनुमा में मदद दे बालों को घना और सेहतमंद बनाए घने मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहरापुर 0300-338-5569।
2: आशिक होंडा शोरूम मेहरापुर एटलेस होंडा मोटरसाइकिल चोपर एतमाद आईमा अख्तियार 3S डीलर आशिक होंडा मोटर्स मेहरापुर जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कल रेट ते दस्तियाब आहे सर्विस सेंटर एटलेस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद आशिक होंडा मोटर्स ते पंहिंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो कंप्यूटराइज जैपनी स्टैचिंग मशीन जे जरिए जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर फ्यूल एडजस्टमेंट आरपीएम जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वने थी होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जे जैर निगरानी आशिक होंडा मोटर्स एड्रेस इंडस बाईपास नस्त रेलवे लाइन मेहरापुर राब्ते जे लाइ आसिम हुसैन आराई
3: 3592 0 3097 3592 0 3597 3597 3597 3597 3597 3597 3597 3597 3597 3597 3597 3597 3597 3597 3597 3597 3597 3597 3597 3597 3597 3597 3597 3597 3597 3597 3597 3597 3597 3597 3597 3597 3597 3597 3597 3597 3597 3597 3597 3597 3597 3597 3597 3597 3597 3597 3597 3597 3597 3597 3597 3597 3597 3597 3597 3597 3597 3597 3597 3597 3597 3597 3597 3597 3597 3597 3597 3597 3597 3597 3597 3597 3597 3597 3597 3597 3597 3597 3597 3597 3597 3597 3597 3597 3597 3597 3597 3597 3597 3597 3597 3597 3597 3597 3597 3597 3597 3597 3597 3597 3597 3597 3597 3597 3597 3597 3597 3597 3597 3597 3597 3597 3597 3597 3597 3597 3597 3597 3597 3597 3597 3597 نزد گرلس ڈگری کالج حالانی روڈ میراپور
4: رابطے لائے منصور احمد میمن 0301 380 83 47

0: आप सुनेंगे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
1: जो पानी न्यू जलालपुर कैनाल में छो है असाके को एतराज ना है। इरसा 2014 में ही न्यू जलालपुर कैनाल लाए एनओसी जारी कर चुकी हुई। 2014 ईस्वी में जलालपुर कैनाल जिस कई हुई बेन सूबन हिमायत कई हुई। सिंध तकरारी कैनाल खिलाफ सीसीआई में भी आवाज उथारियो हो। सिंध हुकूमत जो मौकिफ है तो गडल मफादन वाले काउंसिल अजा तीन न्यू जलालपुर कैनाल की मंजूरी न डिनी है। सीसीआई की मंजूरी का सवाए कैनाल खोलन मुनासिब ना है। प्रिया कुमारी समेत सिंध में 10 का वधिक अगवा ए गुम थियल मासूम बालन की बाजियाबी लाए बबल्लो बायपास वट धरनो 22 डी बिचारी। कुछ देर बाद कौमी शाहरा बंद करण जो ऐलान। सिंध वासन के शिरकत की अपील। प्रिया एक्शन कमेटी के अगवानन जो चवण है तो कौमी शाहरा ते धरनो बारण की बाजियाबी तई जारी रहंदो। पाकिस्तान खिते में अमन की क्याम लाए अहम किरदार अदा किया है। खिते में जारी बोहरान समूरी दुनिया के मुतासिर किया। गडियल ए मजबूत कोशिश हुई अमन जो सबब बणजी सघन थियो। इस्लामाबाद में B2B कॉन्फ्रेंस के खिताब कंदे वजीर आजम चयो ता अमन अमल में फील्ड मार्शल जो कोशिशों तारीख में सदाई याद रखी वेंदी। चीन पाकिस्तान जो इतमाद जोगो ए मुखलस दोस्त है। चीन हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान जो साथ दिनों। सेहत के शोबे में 44 करोड़ डॉलर का मुआदा सुठो सवण है। सीड़पकारी से चीनी ए पाकिस्तानी सीड़पकार के भेटा पेश कया तो। सऊदी अरब पाकिस्तान की रेडलाइन है। सऊदी से हमलो पाकिस्तान से हमलो समझो वो। पाकिस्तान की सियासी ए अस्करी क्यादत ईरानी क्यादत के आगाह कर छ। खबरू इदारे मूजिब पाकिस्तान की आला सियासी ए अस्करी क्यादत ईरानी क्यादत से गालबोल कई है। ईरानी क्यादत के आगाह किया वो तो हुसैन सऊदी अरब से हमला वधाया तो पाकिस्तान दिफाई मुआदे तहत सऊदी अरब की मदद करण से मजबूर थी वो। मदद तलब करण से पाकिस्तान सऊदी अरब से गड हों। पाकिस्तानी क्यादत धुरन के मुतमैन करण की कोशिश कर रही है। यमन से लगंदड़ सऊदी सरहद से पाकिस्तानी फौजी जवान मुकर थियल। हजारे पाकिस्तानी फौजी ए एयरफोर्स जो एक स्क्वाड्रन सऊदी अरब में मुकर्रर है। पाकिस्तान ए सऊदी अरब गुजरियल साल दिफाई मुआदो किया हो।

अमेरिका जा ईरान ते छहें ॾींहं बि मेज़ाइल हमला पुलनि ऐं बिजली घरनि खे निशानो बणायो वियो। अमरीकी हमलनि जे नतीजे में 8 शहरी शहीद 20 ज़ख़्मी थी पिया। ईरानी पोर्ट बंदर अब्बास ॾांहुं ईंदड़ वेंदड़ रस्तनि, रेलवे ट्रैक्स ऐं पुलनि खे तबाह कयो वियो। बू शहर, लोरिस्तान ऐं ॿियनि शहरनि में बिजली घरनि, पुलनि, नेवल ऐं फ़ौजी अॾनि खे बि निशानो बणायो वियो। गुलिस्तान सूबे में ईरान ऐं रूस खे रेल ज़रिए ॻंढींदड़ पुल खे बि अमरीका तबाह करे छॾियो। अमरीकी सेंटकॉम मूजिबि ईरान जी दिफ़ाई ऐं नेवल निज़ाम खे निशानो बणायो वियो आहे। अमरीकी हमलनि जे जवाब में ईरान जा ओमान, बहरीन, कुवैत, शाम, कतर ऐं इराक में जवाबी हमला। अमरीकी फ़ौजी अॾनि ऐं दिफ़ाई निज़ाम खे निशानो बणाइण जी दावा। पासदारान इनकलाब मूजिबि उर्दन में हमले जे नतीजे में अमरीकी विढ़ाक जहाज तबाह थिया आहिनि। ओमान में अमरीका जे जदीद रेडार सिस्टम खे बि तबाह कयो वियो। शाम में बि अमरीका जो कमांड सेंटर तबाह कयो वियो आहे, जंहिं जे नतीजे में केतिरा ई अमरीकी फ़ौजी मारिजी विया। कुवैत ईरानी हमले में बिजली निज़ाम मुतासिर थियण जी तस्दीक करे छॾी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जो चीन ते इलेक्शन में मुदाख़लत ऐं 22 करोड़ वोटर्स जी डेटा चोराइण जो इल्ज़ाम। नेशनल इंटेलिजेंस ऐं FBI खे चीन ख़िलाफ़ जांच जो हुकुम। क़ौम खे ख़िताब कंदे अमरीकी सदर जो चवण हो त अमरीकी ॻुझा इदारा चूंडनि बाबति इंटेलिजेंस मालूमात फौरी तौर जारी कनि। चीनी सदर ट्रंप जे इल्ज़ामनि खे रद्द करे छॾियो। चीनी परॾेही वज़ारत मूजिबि चीन खे अमरीकी चूंडनि में मुदाख़लत करण में दिलचस्पी नथो रखे। इल्ज़ामनि जो मक़सदु चीन खे बदनाम करणु आहे।

0: ऐं कालम में मौजूद आहिनि। फौजी ॿाहिरनि लाइ ख़ुसूसी रियायत हूंदी। राब्ते लाइ फौजी अब्दुल करीम 0301-54-4456 ऐं तौकीर अहमद 0306-1623-793।
1: अस्सलाम वालेकुम अदा।
2: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
1: अदा नओ दुकान खोलियो अथम पर हले ही न तो, छा कजे?
2: अदा दुकान जी मशवरी कराई अथई?
1: न अदा।
0: यार आज कल शहरन तोड़े गोठन में जीए मेरापुर FM 94 ही हले थो। मु पंजो दुकान खोलियो तो FM मेरापुर ते पब्लिसिटी कराई। कारोबार एड़ो कामयाब जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे।
1: मुझे दुकान जी बेड हलंदी?
2: हाँ अदा, कारोबारी इश्तिहारात, आम इतला, मिलाद, मजलिस, सालगिरह जी मुबारक, मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी।
1: अदा जल्दी कर, मुखे मुझी एड्रेस तो बुदा।
0: ऑफिस जी मेरापुर FM 94, नर्द गर्ल्स डिग्री कॉलेज, हालानी रोड, मेरापुर।
2: राबते लाए हाकिम अली जिस्कानी
3: 0301-399-2836।
4: अपना शहर, अपना घर, मेहराबपुर, और मेहराबपुर की आवाज जी FM 94।

0: बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों प्रोग्राम सेहत जी गाल साण करे हाजिर खिदमत अवांजो पंजो मेज़बान हाकिम अली जिस्कानी सामिन जीव खुश त जहान खुश जीव आहे त जहान वाहे सेहत आहे त सब कुछ आही। प्रोग्राम सेहत जी गाल में असांजे स्टूडियो में मौजूद हूंदा आहिनि सिंध जा मशहूर व मारूफ डॉक्टर मंज़ूर हुसैन मेमण साहब, जेकी मुख़्तलिफ़ बीमारियुनि बाबति ॼाण ॾींदा आहिनि। डॉक्टर साहिब जो ख़ासि महिरबानियूं आहिनि, मुहबतूं आहिनि, जो पंहिंजो क़ीमती वक़्तु कढी करे असांजे स्टूडियो में अचनि था। तव्हां असांजे प्रोग्राम में बज़रिया लाइव कॉल शामिलु थी सघो था 0301-91-8051 असांजो लाइव कॉल जो नंबर आहे। तव्हां असांजे प्रोग्राम में बज़रिया लाइव कॉल शामिल थी सघो था। मूंखे ॿुधाईंदा हलूं त डॉक्टर साहिबु हर अरबा, ख़मीस, जुमो, छंछर, आचर ऐं सूमर ते सुबुह जो 10 खां शाम 5 वॻे ताईं जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक साम्हूं वधण पोटरा पेट्रोल पंप कोटली कबीर रोड महरापुर शहर में मरीज़नि जो इलाज कंदा आहिनि। डॉक्टर साहिबु मुख़्तलिफ़ बीमारियुनि जा माहिर डॉक्टर आहिनि, कॾहिं बि तव्हांखे मायूस नाहे थियणो, का बि बीमारी लाइलाज नाहे। शिफ़ा ॾियण वारी ज़ात अल्लाह ताला जी आहे ऐं इलाजु डॉक्टर कंदो। अगरि अव्हांखे पिते में पथरी आहे, गुर्दे जी पथरी आहे, मसाने जी पथरी आहे, पायल्स आहिनि, नक जी हॾी वधियल आहे, गले जा गुदूद वधियल आहिनि, उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो बग़ैर ऑपरेशन जे, यानी ऑपरेशन नाहे कराइणो, बग़ैर ऑपरेशन जे कामयाबु इलाजु कयो वञे थो। इन खां अलावा केॾो बि पुराणो अव्हांखे संधनि जो सूरु आहे, जोड़नि जो सूरु आहे, कुंदरग जो सूरु आहे, उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाबु इलाजु कयो वञे थो। जिगर जी बीमारी आहे, हेपाटाइटिस बी आहे, हेपाटाइटिस सी आहे, जिन ॿारनि जो कदु नंढो आहे, कदु नथो वधे पियो, या जिन जो मर्दनि या औरतुनि जेको मोटापो थी वियो आहे, उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाबु इलाजु कयो वेंदो आहे। तव्हां असांजे प्रोग्राम में बज़रिया लाइव कॉल शामिलु थी सघो था 0301-91-8051। डॉक्टर साहिब खे असां ख़ुश आमदी चऊं था पंहिंजे प्रोग्राम में, महफ़िल में, मोहबत में, जो पंहिंजो क़ीमती वक़्तु कढी करे असांजे स्टूडियो में आया आहिनि। डॉक्टर साहिबु अस्सलामु अलैकुम।
1: वालेकुम अस्सलाम साईं।
0: डॉक्टर साहिबु ठीकु आहियो? त बि ठीकु आहे
1: जी साईं, अलाह ताला जा अहसान।
0: डॉक्टर साहिबु तव्हां कहिड़े कहिड़े ॾींहनि ते वेहो था क्लिनिक ते, इन खां अलावा कहिड़े बीमारियुनि जो इलाजु कंदा आहियो ऐं अॼु कहिड़े मौज़ू बाबति ॼाण ॾींदा?
1: औज़ु बिल्लाहि मिन शैतान जीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पहिरियां त सभु तारीफ़ूं रब पाक जूं, जेको असांखे जीआरे थो, खाराए थो, रोज़ी ॾिए थो, ख़ुशी ॾिए थो, सभिनी ज़मीन आसमानी आफ़तुनि खां महफ़ूज़ रखे थो। असांजो प्रोग्राम सिहत जी ॻाल्हि जेको रोज़ाना बर वक़्तु टाइम ते निश्चित थींदो आहे, ऐं असांजी क्लिनिक जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक महरापुर शहर में हफ़्ते जा 6 ई ॾींहं, जुमो, छंछर, आचर, सूमर, अंगारे जो ॾींहुं असांजी क्लिनिक ऑफ हूंदी आहे, यानी क्लिनिक बंदि हूंदी आहे। अरबा, ख़मीस, यानी 6 ॾींहं हिकु हफ़्ते जो असांजी क्लिनिक जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक महरापुर शहर में वधण पोटरा पेट्रोल पंप जे साम्हूं कोटड़ी रोड ते मौजूदु हूंदी आहे। सुबुह जो टाइमिंग जे हवाले सां सुबुह जो 10 बजे खां शाम जो 5 बजे ताईं। इन खां अलावा तव्हांखे ख़बर आहे त जेके रोज़मर्रा जा जेके मसाइल हूंदा आहिनि या जेके बीमारियुनि जे हवाले सां सिंधी ॾस हूंदा आहिनि, उहे बि तव्हांखे हिन प्रोग्राम जी तवसुस सां जेको आहे सो पहुचाईंदा आहियूं, या जेके नंढियूं या वॾियूं बीमारियूं हूंदियूं आहिनि उन्हनि जी अवेयरनेस ई जेको आहे सो हिन प्रोग्राम जी शिनाख़्त आहे। अहिड़े तरीक़े सां कहिड़ी बि बीमारी आहे, चाहे पुराणो नज़लो ज़ुकाम आहे, दम आहे, जोड़नि जी बीमारी आहे, या संदनि जो सूरु आहे, या कुनरग जो सूरु आहे, जिगर जी जेके बि बीमारियूं आहिनि, हेपाटाइटिस ए, बी, सी, जेकी बि बीमारियूं आहिनि, उन खां अलावा जेको आहे सो गुर्दे जी जेकी पथरी आहे या पिते जी पथरी जे हवाले सां बग़ैर ऑपरेशन जे कामयाबु इलाजु जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक ते कयो वेंदो आहे। बवासीर जो कामयाबु इलाजु, अहिड़े तरीक़े सां जेकॾहिं मौज़ूआतुनि जे हवाले सां ॻाल्हि कयूं त जेके सो असां वटि क्लिनिक ते जी मां ॻाल्हि कई त हर क़िस्म जी बीमारी जा पेशंट्स ईंदा आहिनि, पर जॾहिं ॾींहनि में ॾिसंदा आहियूं त कुझु जेके ज़्यादा पेशंट्स जंहिं बीमारी जा ईंदा आहिनि, यानी उहा सम्झंदा आहियूं त हिन वक़्तु उनजी वबा फैलिजी रही आहे या उहा बीमारी ज़्यादा थी रही आहे, त उनजे बारे में अवेयरनेस ॾियणु असांजो कमु हूंदो आहे। अहिड़े तरीक़े सां हिन दफ़े बि असांजे क्लिनिक्स ते खोड़ सारा पेशंट ॿिया बि आहिनि, लेकिन चमड़ी जूं बीमारियुनि जे में बि हिकिड़ी ख़ासि बीमारी हूंदी आहे, सोरियासिस। सोरियासिस छा आहे, छो थींदी आहे या कंहिंखे थींदी आहे, या जेकॾहिं थी वञे त उनखे जो कहिड़ो इलाजु हूंदो आहे, उनजे बारे में नंढी अवेयरनेस ॾींदासीं। जो सोरियासिस अहिड़ी बीमारी हूंदी आहे जो हीअ हिकु नंढी बीमारी नाहे, नाले में हिकिड़ी सोरियासिस जे नाले सां बीमारी आहे, लेकिन हीअ बीमारी ॾह ॾह साल वीह वीह साल पेशंट खे जेको आहे सो रहंदी आहे, ऐं उहो मरीज़ जेको आहे सो दर बदर जेको आहे सो घुमंदो रहंदो आहे, यानी हर शहर में हर डॉक्टर वटि, लेकिन शिफ़ा जेको आहे सो उनखे घटि मिलंदी आहे। जेकॾहिं कुझु वक़्त जे लाइ उहो ठीकु थींदो आहे त दोबारा वरी उहा बीमारी तकलीफ़ उनखे थी वेंदी आहे, ऐं उहो पेशंट जेको आहे सो बार बार उन में जेको आहे सो मुबतला रहंदो आहे, ऐं तमामु उन में ॿियूं बि खोड़ सारियूं पेशंट्स खे तकलीफ़ूं खे मुंहुं ॾियणो पवंदो आहे। ऐं हीअं जीअं त मां पहिरां ॻाल्हि कई त सोरियासिस हीअ हिकु क्रॉनिक ऑटो इम्यूनी डिज़ीज़ आहे, जंहिंखे असां जीअं कॾहिं क्रॉनिक असां चवंदा आहियूं पुराणियूं जेके बीमारियूं हूंदियूं आहिनि, ऐं ऑटो इम्यूनी डिज़ीज़ उहा हूंदी आहे जेके अंदरियां ई जेके पंहिंजा सेल्स हूंदा आहिनि जिस्म जा, जॾहिं डेथ थियणु लॻंदा आहिनि या उन्हनि में फॉल्ट थियणु लॻंदो आहे त पंहिंजो ई जिस्म जेको आहे सो यानी हुन सां विढ़णु लॻंदो आहे, ऐं पोइ जेको आहे सो इम्यून सिस्टम जे नाकारा हुजण जे करे जेको आहे सो या जेके बि सेल्स हूंदा आहिनि डेथ थियणु लॻंदा आहिनि, ऐं पोइ उहा बीमारी वधंदी वेंदी आहे। अहिड़ी तरीक़े सां उन बीमारी में थींदो छा आहे, थींदो इहो ई आहे त जेको आहे सो यानी उहा जेकी बि चमड़ी हूंदी आहे खुरदनी थी वेंदी आहे, जिस्म जे कहिड़े बि हंध ते, यानी निंड ते, पेट ते, अखियुनि जे मथां, बिरुनि जे मथां, हथनि ते, पेरनि ते, पुठी ते, मथे में, तव्हां ॾिसंदो त जेको आहे सो ईअं जीअं छिलर, मच्छी जा छिलर जेको आहे सो निकिरी ईंदा आहिनि, ऐं उहे जेके जेको आहे सो मच्छी जा छिलर हूंदा आहिनि बिल्कुलु उन्हनि वांगुरु जेको आहे सो थी वेंदा आहिनि, ऐं पापड़ियूं ठही वेंदियूं आहिनि, ॻाढ़ा चुटा निशान ठही वेंदा आहिनि। अहिड़ा खोड़ सारा पेशंट हिन वक़्तु बि असां वटि अंडर ऑब्ज़रवेशन आहिनि, ऐं अलाह ताला जी महिरबानी सां ठीकु थी विया आहिनि, ऐं वॾी ख़ुशी थींदी आहे जॾहिं अहिड़े क़िस्म जो पेशंट जेको बीहंदा थी अचे ऐं ॾह ॾह वीह वीह सालनि में मुबतला हुजे, ऐं उहो जेकॾहिं हुते ठीकु थी वञे ऐं पंहिंजा फीडबैक असांखे FM रेडियो ते ॾिए या असां वटि अची ऐं हिते इंटरव्यू रिकॉर्ड कराए वञे, त हीअ हिकिड़ी वॾी ख़ुशनसीबी आहे जेको आहे सो असांजे क्लिनिक जी ऐं असांजे इलाज जी। जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक ते होम्योपैथिक इलाज सां जेकॾहिं पेशंट अहिड़नि वॾनि बीमारियुनि में ठीकु थी वञे थो त नंढियूं बीमारियूं हुनजे लाइ कुझु बि कोन्हे। वरी ॻाल्हि वरी बि असां हिकिड़ी कंदासीं त हिन सभु में रब ताला जी कर्म नवाज़ी आहे, जेकॾहिं उहो किथां बि शिफ़ा ॾिए त जेको आहे सो बिल्कुलु शिफ़ा थी सघे थी। अहिड़े तरीक़े सां ई जीअं मां ॻाल्हि कई त जेको आहे सो असां वटि इहे पेशंट्स ईंदा आहिनि ऐं इहे अहिड़नि बीमारियुनि में जॾहिं ठीकु थी वेंदा आहिनि त पंहिंजा व्यूज़ रिकॉर्ड कराए वेंदा आहिनि, त हिकिड़ा व्यूज़ बि अवां ताईं पहुचाईंदासीं जेको उहो पेशंट लाइव जेको आहे सो असांखे फेसबुक ते जेको आहे सो रिकॉर्ड कराए वियो, ऐं उहो व्यूज़ इन ई बीमारी जे हवाले सां आहे। अचो तव्हांखे बि जेको आहे सो हिन सां जेको आहे सो बिल्कुलु ॿुधाईंदासीं।
0: दोस्तो, तव्हांखे ॿुधाईंदा हलूं, प्रोग्राम आहे सिहत जी ॻाल्हि, हिकु दोस्त जा व्यूज़ आहिनि। जी डॉक्टर साहबु,

दोस्त व्यूज़ अव पहुँचाई जी मौजूद हैं छो जो जो मूल सेहतमंद वो है यकीन उनकी भी ख्वाहिश होंगी है वह पा भी चवंदा तो असा के अल्लाह ताला तरफा शिफा मिली है तो जी बन के अवं यो नोट करा बुधा तो जी असो असो मैसेज बन पहुंचे तो उ भी जो सो उन फायद हासिल कन अचो तो उनका व्यूज बुधों समझा तो डॉक्टर साहब अस वो है असल में पियल है नेट से पियल है एफ बी से पियल है इन के करो इंटरनेट सिलो के कर मसलो पेश अचे पो प्रोग्राम है सेहत की गाल प्रोफेसर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन साहब असाजे स्टूडियो में मौजूद हैं जी सेहत बाबत जान दी रहा मालूम दी रहा तुम असो प्रोग्राम में बजरिया लाइव कॉल शामिल थी सको था 0301 196 8051 0301 196 8051

0: अहिड़े तरीक़े सां जोड़नि जी बीमारी बि में बि जेको आहे सो पेशंट घणा वरी पोइ मालिश वग़ैरह घणो कराईंदा आहिनि त या उन्हनि खे जेको आहे सो या ज़्यादातर जेको आहे सो अहिड़े क़िस्म जा पेशंट जिन जे घुटननि में जिन जी गोॾनि में जेको आहे सो मिख हूंदी आहे हिकिड़ी जेकी घटिजी वेंदी आहे गैप अची वेंदो आहे पोइ उहे अॻिते हली जेको आहे सो गोॾा पाण में जेको आहे सो टकराइबा आहिनि ऐं पोइ भुरभुरी वेंदा आहिनि अहिड़े तरीक़े सां उन्हनि खे इहा ई कोशिशि कंदासीं ॿुधाईंदासीं त जेकॾहिं कंहिंखे बि अहिड़े क़िस्म जी तकलीफ़ थिए थी त उन में डराई बिल्कुलु न कनि ऐं क़रीबी कंहिं डॉक्टर खे ॾेखारनि ऐं बहितर ईअं ई आहे त उनखे हिकु त जेको आहे सो अहिड़े क़िस्म जे पेशंट में वॾी ॻाल्हि हूंदी आहे छो जो असांजो प्रोग्राम बि अवेयरनेस जे हवाले सां आहे त वॾे में वॾी ॻाल्हि हूंदी आहे एहतियात इहो ई आहे त मालिश नाहे करणी ओकड़ू नाहे विहणो वज़न ज़्यादा नाहे खणणो ॾाकण जेको आहे सो नाहे चढ़णी ऐं उन खां पोइ जेको आहे सो यकदमि जेतिरो थी सघे त इलाजु जेको आहे सो कराइणु इलाजु असां वटि घणो ईअं थींदो आहे त घणा वञी गोॾनि में सुयूं हणाईंदा आहिनि ऐं जेको आहे सो मालिशूं कंदा आहिनि या अदरवाइज़ ॿियो ट्रीटमेंट त पोइ उन में वरंदो गोॾा जेको आहे सो वेही वेंदा आहिनि इन जे करे इहो या कुझु कार्टिज़ोन दवाऊं अहिड़ियूं इस्तेमालु कंदा आहिनि जंहिंजी आदत पइजी वेंदी आहे पोइ जेसिताईं माण्हू उहा दवा गोरी न खाईंदो आहे त सूरु न छॾींदो आहे पोइ उनजो नतीजो इहो निकिरंदो आहे त अॻिते हली उहे गोॾा जेको आहे सो सुॼी वेंदा आहिनि ऐं जंहिंजे जोड़नि में ईअं थींदी आहे त उन्हनि जा जोड़ जेको आहे सो टेढ़ा थी वेंदा आहिनि हॾियूं टेढ़ियूं थी वेंदियूं आहिनि ऐं पोइ उहे जेको आहे सो ॿियूं बीमारियुनि में मुबतला थी वेंदो आहे इन जे करे अहिड़े क़िस्म जी बीमारी में जेकॾहिं पेशंट थिए थो त असां वटि उनजो ट्रीटमेंट मौजूदु आहे ऐं रूबरू ॾेखारे सघूं था
1: दोस्तों तव्हांखे ॿुधाईंदा हलूं प्रोग्राम सिहत जी ॻाल्हि ही वक़्तु आहे कमर्शियल ब्रेक जो त हलूं था कमर्शियल ब्रेक जी तरफ़ तव्हां असांजे प्रोग्राम में बज़रिया लाइव कॉल शामिलु थी सघो था 0301-9196-51
2: खुशखबरी लेजर हेयर रिमूवल गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल अब फिक्र छोड़िए आपके शहर मेहरापुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ट जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे बाजू टांगे और पूरे जिस्म के गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए महफूज और मौसर ट्रीटमेंट बार बार वेक्स और शेविंग से निजात नरम साफ और खूबसूरत जिल्द कम वक्त बेहतरीन नतायज अब गैर जरूरी बालों की फिक्र खत्म लेजर हेयर रिमूवल के साथ आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद खरी रोड मेहरापुर 0300-338-5569
3: आशिक होंडा शोरूम मेहरापुर एटलस होंडा मोटरसाइकिल पर एतमाद अख्तियार 3S डीलर आशिक होंडा मोटर्स मेहरापुर जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कयल रेट ते दस्तियाब आहे सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद आशिक होंडा मोटर्स ते पंहिंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो कंप्यूटराइज जैपनी स्टेचिंग मशीन जे ज़रिए जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन ज़रिए कई वञे थी होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जे ज़ेर निगरानी आशिक होंडा मोटर्स एड्रेस इंडस बाईपास नस्त रेलवे लाइन मेहरापुर राब्ते जे लाइ आसिम हुसैन आराई 0307-359-2120
2: खुशखबरी क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं अब फिक्र छोड़िए शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है बालों की जदीद और मौसर इलाज एक्सोसोम्स एंड PRP ट्रीटमेंट के साथ बालों का झड़ना कम करने में मददगार कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए नए बालों की निशोनुमा में मदद दे बालों को घना और सेहतमंद बनाए घने मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद खरी रोड मेहरापुर 0300-338-5569

कें एक जी गलती जी सजा बे के न मिलन घुर्जे एहतजाज कंदड़ गलत हुंदा पर सजा पूरे कश्मीर के मिली रही है यो केड़े किस्म जो इंसाफ है जो इतने मोबाइल फोन ही नथा हलन एहतजाज कंदड़न ए हुकूमत का मुतालबो है त आम कश्मीरियन के तकलीफ न दियो पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलाल भुट्टो जरदारी जो आजाद कश्मीर के इलाके डडियाल में चूंड जलसे के खिताब बिलाल भुट्टो जरदारी चो त ट्रुथ एंड रिकंसिलेशन कमीशन जोड़ने की तजवीज दिनी है पर इन वक्त ताई को जवाब ना है आयो दरख्वास्त है त कमीशन जो कम मुकम्मल थियण ताई एहतजाज ए कार्रवाई रोकियो वन रियासत पाकिस्तान हर मुस लंग खोल रहा है सके थी तो मुझो बंद कश्मीर भी खोल रहा है।

0: पंजाब सिंध के एहतजाज एतराज ए सिंध असेंबली के ठहराव के रद्द कदे तकरारी न्यू जलालपुर कैनाल में पानी छोड़ कर छो रसूल हेडवर्क्स ता जहलम दरिया जो पानी आसमाइशी बुनियादन ते न्यू जलालपुर कैनाल में छोड़ कर रसूल हेडवर्क्स ता लगभग 1,350 क्यूसिक पानी जो छोड़ इरशाद अर्जुमान जो चवण है ते पंजाब पेंचे हिस्से जो पानी न्यू जलालपुर कैनाल में छो असा के कोई इतराज ना है। इरशा 2014 में ही न्यू जलालपुर कैनाल लाए एनओसी जारी कर चुकी हुई। 2014 में जलालपुर कैनाल की सिंध मुखालफत कई हुई बेन सूबन हिमायत कई हुई। सिंध तकरारी कैनाल खिलाफ सीसीआई में भी आवाज उथारे हो। सिंध हुकूमत जो मौकिफ है त गडियल मफादन वाली काउंसिल अया ताई न्यू जलालपुर कैनाल की मंजूरी न डिनी है। सीसीआई की मंजूरी का सिवाय कैनाल खोलण मुनासिब ना है। प्रिया कुमारी समेत सिंध में 10 का वधिक अगवा ए गुम थियल बारन की बाजियाबी लाए बबरलो बाईपास वट धरणो 12 डी भी जारी। कुछ देर बाद कौमी शाहरा बंद करण जो ऐलान सिंध वासियन के शिरकत की अपील। प्रिया एक्शन कमेटी अगवाणन जो चवण आए तो कौमी शाहरा ते धरणो बारन की बाजियाबी ताई जारी रहंदो। पाकिस्तान खत्े में अमन के क्याम लाए अहम किरदार अदा किया है। खत्े में जारी बहरान समूरी दुनिया के मुतासिर किया है। गडियल ए मजबूत कोशिशों ही अमन जो सबब बणजी सघन थी। इस्लामाबाद में B2B कॉन्फ्रेंस के खिताब कंदे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ चयो तो अमन अमल में फील्ड मार्शल जो कोशिशों तारीख में सदाई याद रखी वेंदियों। चीन पाकिस्तान जो इतमाद जोगो ए मुखलिस दोस्त है। चीन हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान जो साथ दिनो है। सेहत के शोबे में 44 करोड़ डॉलर का मुआदा सुठो सवण आन सीड़पकारी ते चीनी ए पाकिस्तानी सीड़पकारन के भेटा पेश कया तो। सऊदी अरब पाकिस्तान की रेड लाइन है। सऊदी ते हमलो पाकिस्तान ते हमलो समझो वेंदो। पाकिस्तान की सियासी अस्करी क्यादत ईरानी क्यादत के आगाह कर छो। खबरू दायरे मूजिब पाकिस्तान की आला सियासी अस्करी क्यादत ईरानी क्यादत से गाल बोल कई है। ईरानी क्यादत के आगाह किया है हुसैन सऊदी अरब से हमला बताया तो पाकिस्तान दिफाई वायदे तहत सऊदी अरब की मदद करते मजबूर थी वेंदो।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।

0: खुशखबरी, लेजर हेयर रिमूवल गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ट जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे, बाजू, टांगे और पूरे जिस्म के गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए महफूज और मौसर ट्रीटमेंट, बार बार वेक्स और शेविंग से निजात, नरम, साफ और खूबसूरत जिल्द, कम वक्त बेहतरीन नतायज। अब गैर जरूरी बालों की फिक्र खत्म लेजर हेयर रिमूवल के साथ। आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर, 03003385569।
1: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है। सुनते रहो जी FM 94।

0: मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है। बालों की जदीद और मौसर इलाज, एक्सोसोम्स एंड पीआरपी ट्रीटमेंट के साथ बालों का झड़ना कम करने में मददगार, कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए, नए बालों की निशोनुमा में मदद दे, बालों को घना और सेहतमंद बनाए। घने मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद, खरी रोड मेहरापुर, 0300-33-85569।
1: इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर, होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद आई बा अख्तियार इदारो। इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर, नईन मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कर रेट ते दस्तयाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया, जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन जरिए, जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट, आरपीएमजी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वनिए थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी जेर निगरानी। इरशाद ऑटोस हालाणी रोड मेहरापुर, राब्ते जे लाइ 0320-18-00-003।
2: खुशखबरी, जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक सामू वधन बोटा पेट्रोल पंप कोटड़ी कबीर रोड मेहरापुर कराची इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन एम ए डी एच एम एस सिंध आर एच एम पी इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड फैमिली फिजिशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा खमीस जुमे छंछर आचर ए स

0: जी पथरीजो बगैर ऑपरेशन जी कामयाब इलाज कयो वने तो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी खारिश फट फुरड़ियों बारन में कद जो न वधण मर्दन ऐं औरतुन में वजन जो न वधण उन्हें सभिनी बीमारियुन जो कामयाब इलाज कयो वने तो राबते लाइ 0301-9196-851।
1: अस्सलाम वालेकुम अदा।
2: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
1: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो, छा कजे?
2: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
1: न अदा?
3: यार आजकल शहरन तोड़े गोठन में जीए मेरा पर एफएम 94 ही हले थो। मु पंजो दुकान खोलियो तो एफएम मेरा पर ते पब्लिसिटी कराई। कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली नथी चवे।
1: मुझे दुकान जी बेड हलंदी?
2: हां दा, कारोबारी इश्तिहारात आम इतला मिलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी।
1: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा।
3: ऑफिस जी मेरापुर एफएम 94 नज गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर। राबते लाए मंसूर अहमद मेमन 0301-380-8347।
4: अपना शहर अपना घर मेहराबपुर और मेहराबपुर की आवाज जीए एफएम 94।

एक वफाकी वजीर चवे तो 12 सीटूं संदन खीसे में आहन जैंजी ज़हनियत एड़ी हुंदी त उनके कश्मीर जी बे का परवाह न हुंदी। नू लीग डडियाल मीरपुर कोटली रावला कोट के कश्मीर जो हिस्सो ही न थी मने। वजीर आजम वाजे करे तो संदस बचाव वाले वजीर जेको चई रो है संदस पॉलिसी आहे या न। बचाव वाले वजीर जो बयान वजीर आजम की पॉलिसी ना है तो केस बाहर कटी छे। पीपुल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जो आजाद कश्मीर के इलाके डडियाल में चूं जलसे के खिताब। बिलावल भुट्टो तो कें एक गलती की सजा बे के न मिलन घुर्जे। एहतजाज कंदड़ गलत हुंदा पर सजा पूरी कश्मीर के मिली रही है। एहतजाज कंदड़न हुकूमत का मुतालबो है आम कश्मीर के तकलीफ न दियो। तजवीज दिनी ट्रुथ एंड रिकंसलेशन कमीशन जोड़ी वे पर इन वक्त तीन न एहतजाज कंदड़न नई वरी हुकूमत जो जवाब आयो। दरख्वास्त है कमीशन जो कम मुकम्मल थियण तीन एहतजाज ए कार्रवाई रोकी वन। रियासत पाकिस्तान हुरमज लंग खोलाए सके थी तो मुझो कश्मीर बंद है उ भी खोल।

0: पंजाब सिंध जी एहतजाज एतराज ए सिंध असेंबली के ठहराव के रद्द कंदे तकरारी न्यू जलालपुर कैनाल में पानी छोड़ कर छोड़ो रसूल हेडवर्क्स ता जहलम दरिया जो पानी आजमाइशी बुनियादन से न्यू जलालपुर कैनाल में छोड़ कयो वयो रसूल हेडवर्क्स ता लगभग 1350 क्यूसिक पानी जो छोड़ इरसा तर्जमान जो चवण है तो पंजाब पंज हिस्से जो पानी न्यू जलालपुर कैनाल में छोड़ो है असा के को भी एतराज ना है इरसा 2014 ईस्वी में ही न्यू जलालपुर कैनाल लाए एनओसी जारी कर चुकी हुई 2014 ईस्वी में जलालपुर कैनाल की सिंध मुखालफत कई हुई बेन सूबन हिमायत कई हुई सिंध तकरारी कैनाल की मंजूरी सीसीआई की मंजूरी का सवाए कैनाल खोलन मुनासिब ना है प्रिया कुमारी समेत सिंध में 15 का वधी के अगवा गुम थियल बारन की बाजियाबी लाए बबलो बाईपास वट कौमी शाहरा ते धरनो लगी वयो पंजाब समेत मुख्तलिफ इलाकन दा ईंदड़ वेंदड़ ट्रैफिक मुअतल बबलो बाईपास वट 22 दिन का धरनो हणी वेठल प्रिया एक्शन कमेटी के अगवानन वकीलन सिविल सोसाइटी वडे अंग में मौजूद शहरन कौमी शाहरा के बंद कर छो प्रिया एक्शन कमेटी अगवानन जो चवण हो तो कौमी शाहरा ते धरनो बारन की बाजियाबी ते जारी रहंदो
1: आप सुन रहे थे जीए वक्त पर केटीएन न्यूज
2: जहां उम्मीद के दिए जलते हैं
3: रोशनी का काफिला मंजिल की तरफ गामजन मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर शानदार तालीमी इमारत प्रोफेसर कुर्बान अली मेमन एयर कंडीशन एकेडमिक ब्लॉक का इनेकार मेहनती मुशाक और तजुर्बेकार तदरीसी अमला सरसब्ज बागीचा बेहतरीन फर्नीचर शानदार कंप्यूटर फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की लैब्स ऑडियो और विजुअल लेक्चर सिस्टम की सहूलत केमिस्ट्री फिजिक्स बायोलॉजी रियाजी और इंग्लिश पर खुसूसी तवज्जा एंट्री टेस्ट के लिए मेडिकल और इंजीनियरिंग में काबिले तहसीन नताइज खेलों का मैदान और वहां मुनक्किद होने वाले मुकाबले तहरीर तकरीर और जहनी आजमाइश के मुकाबले स्टडी टूर्स अपनी आँखों के नूर बच्चियों और प्यारे बेटों की मयारी तालीम तरबियत के लिए आज ही मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर का विजिट करें मजीद राब्ते के लिए डॉक्टर अल्ताफ हुसैन मेमन मैनेजिंग डायरेक्टर मजहर स्कूल सिस्टम 03000002734 निसार अहमद मेमन प्रिंसिपल मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर 03013865453
4: मेहरान आयरन स्टोर हालानी होलसेल डिपो अ नेम टू बी ट्रस्टेड
5: सरिया गार्डर टीयर एंगल चैनल पट्टी लोही दरवाजा सिल्वर जा चौंक सीमेंट रेती क्रेश आई रंग वगैरह बाजार का बारिया दस्तियाब आई
4: हाँ यचो मेहरान आयरन स्टोर नज़्द बलोच पेट्रोल पंप नेशनल हाईवे हालानी
5: राब्ते लाए प्रोप्राइटर गुलाम नबी मुगल 03003204372 आई 02424601000

0: ऐं कालम में मौजूद आहिनि। फ़ौजी ॿाहिरनि लाइ ख़ुसूसी रिआयत हूंदी। राब्ते लाइ फ़ौजी अब्दुल करीम 0301-5431-456 ऐं तौकीर अहमद 0306-1623-793।
1: इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर। होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद ऐं बा अख़्तियार इदारो इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर। नईं मोटरसाइकिल जी सेल कंपनीअ जे मुक़रर कयल रेट ते दस्तियाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया, जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनीअ जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स ख़ुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज्ड जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए, जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज्ड जापानी मशीन ज़रिए कई वञे थी। होंडा जे क्वालिफाइड

0: टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी इरशाद ऑटोस हालाणी रोड मेहरापुर राबते जे लाइ 0320180003।
1: खुशखबरी, अपनी जिल्द को दे नई ताजगी, चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ। अब फिकर छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है। गहरी सफाई और फोरी ग्लो जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे, सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार। फेशियल रेजुविनेशन, साफ तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जिल्द, जदीद टेक्नोलॉजी के साथ महफूज और मौसर स्किन केयर। नोट, खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है। आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं। पता, रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नजद रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर। 0300-338-5569।
2: अस्सलाम वालेकुम अदा।
3: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
2: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो, छा कजे?
3: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
2: न अदा?
4: यार आज कल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरापुर एफएम 94 ही हले थो। मु पंजो दुकान खोलियो तो एफएम मेरापुर ते पब्लिसिटी कराई। कारोबार एड़ो कामयाब जो एड बंद कराण ते दिल्ली नथी चवे।
2: मुजे दुकान जी बेड हलंदी?
3: हां दा, कारोबारी इश्तिहारात, आम इतला, मिलाद, मजलिस, सालगिरह जी मुबारक, मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी।
2: अदा जल्दी कर, मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा।
4: ऑफिस जी मेरापुर एफएम 94, नज़ गर्ल्स डिग्री कॉलेज, हालाणी रोड, मेरापुर।
3: राबते लाए हाकिम अली जिस्कानी।
5: 0301-399-2836।
6: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है। सुनते रहो जी एफएम 94।

खुशखबरी, जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक साम्हूं वधण बोटा पेट्रोल पंप कोटड़ी कबीर रोड मेरापुर कराची ऐं इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंज़ूर हुसैन मेमण एम ए डी एच एम एस सिंध आर एच एम पी इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट ऐं फैमिली फिज़िशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा खमीस जुमे छंछर आचर ऐं

0: मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जी कामयाब इलाज कयो वने तो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी खारिश फट फुरड़ियों बारन में कद जो न वधण मर्दन ऐं औरतुन में वजन जो न वधण उन्हें सभिनी बीमारियुन जो कामयाब इलाज कयो वने तो राबते लाइ 0301-9196-851
1: इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद ऐं बा अख्तियार इदारो इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर नईं मोटरसाइकिल जी सेल कंपनीअ जे मुकरर कयल रेट ते दस्तियाब आहे सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे होंडा कंपनीअ जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन जरिए जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल की कारकर्दगी तमाम बेहतर फ्यूल एडजस्टमेंट आरपीएम जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वनी थी होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी जेर निगरानी इरशाद ऑटोस हालानी रोड मेहरापुर राबते जे लाइ 03201800

0: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते
1: अपना शहर अपना घर मेहराबपुर और मेहराबपुर की आवाज GFM 94।

पंजाब सिंध के एहतजाज एतराज के रद्द कंदे तकरारी न्यू जलालपुर कैनाल में पानी छोड़ कर छोड़ो। रसूल हेडवर्क्स तां जहलम दरिया जो पानी आजमाइशी बुनियादन ते न्यू जलालपुर कैनाल में छोड़ कयो वयो। रसूल हेडवर्क्स तां लगभग 1350 क्यूसिक पानी छोड़। इरसा तर्जमान जो चवणा है त पंजाब पंजे हिस्से जो पानी न्यू जलालपुर कैनाल में छड्यो आहे, असांखे को एतराज न आहे। इरसा 2014 ईस्वी में ई न्यू जलालपुर कैनाल लाइ NOC जारी करे चुकी हुई। 2014 ईस्वी में जलालपुर कैनाल जी सिंध मुखालफत कई हुई, ॿियनि सूबनि हिमायत कई हुई। सिंध तकरारी कैनाल ख़िलाफ़ CCI में बि आवाज़ उथारियो हो। सिंध हुकूमत जो मौक़िफ़ आहे त गॾियल मफ़ादनि वारी काउंसिल अञा ताईं न्यू जलालपुर कैनाल जी मंज़ूरी न ॾिनी आहे। CCI जी मंज़ूरी खां सवाइ कैनाल खोलणु मुनासिब न आहे।

0: काबीना ने और वजीर आजम साहब ने जो फैसला किया है वो ये है, शफाफियत इस निजाम में लाने के लिए ओगरा को अब से ये जिम्मेदारी दी जाएगी कि रोजाना की बिना के ऊपर वो कीमतों का बैनुल अक्वामी मंडी के लिहाज से फैसला करे और ना सिर्फ फ्लैट्स का वो रेट जिसके मुताबिक दुनिया के अंदर कीमतें तय की जाती हैं वो अपनी वेबसाइट के ऊपर शाया करे, उस कीमत का जो आपके और हमारे लिए हर पेट्रोल पंप के ऊपर नजर आती है उसके पीछे वो कौन कौन से अंसर हैं जिनसे वो कीमत को बनाया जाता है वो भी ओगरा को कहा गया है कि आवाम के सामने पब्लिश करा करे ताकि लोगों को पता चले कि ये कितना नागुजीर है कि हम इस मामले को आगे शफाफियत के साथ लेके चलें और जो फैसला कर रहे हैं तकलीफ में जरूर होगा पर किस तरह से वो रियासत को मजबूत करने के लिए लाजिम था कि आज 70-80 साल के बाद भी पाकिस्तान 90% अपनी तवानाई की जरूरत इंपोर्ट्स के जरिए मीट करता है कि शहबाज शरीफ साहब ने आज भी FIA IB सारी जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं उनको ये हिदायत जारी कर दी है कि नाजायज मुनाफा खोरी अगर ऑयल सेक्टर के अंदर किसी किस्म की किसी जगह पे होने की कोशिश हुई तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी।
1: वफाकी हुकूमत पेट्रोलियम शयुनि जे अघनि जो तयन रोज़ानो जे बुनियाद ते करण जो ऐलान करे छॾियो। पेट्रोलियम वारे वज़ीर अली परवेज मलिक चयो आहे त ओगरा रोज़ानो जे बुनियाद ते हुकूमत खां पुछण खां सवाइ आलमी क़ीमतनि मुताबिक तेल अघनि जो फ़ैसिलो कंदी। आलमी सतह ते डीज़ल $110 मां वधी $140 ताईं पहुची वियो आहे। 130 अरब जा वसीला इस्तेमाल कंदे माण्हुनि खे सहारो ॾियण जी कोशिश कई। पेट्रोल आलमी सतह ते सस्तो थियण ते अवाम खे 70-80 रुपियनि जो रिलीफ ॾिनो वियो। अवाम ते कंहिं बि क़िस्म जो वाधू बार न विधो वियो। अता तरण चयो त हिते में छिकाण सबबि पेट्रोलियम शयुनि जे अघनि में वाध थी रही आहे। मुख़्तलिफ़ मुल्कनि मां कार्गो घुराए तवानाई ज़रूरतनि खे पूरो कयो वियो।
2: पेट्रोल पंप मालिकनि रोज़ाने जी बुनियाद ते तेल अघनि जूं क़ीमतूं मुक़रर करण वारे हुकूमती फ़ैसिले खे रद्द करे छॾी। मुलकगीर हड़ताल जी धमकी। आल पाकिस्तान पेट्रोल पंप ओनर्स एसोसिएशन जे अॻवाननि सख़्त रद्द अमल ज़ाहिर कंदे चयो आहे त हुकूमत बेवकूफ़ी वारो फ़ैसिलो वापसि न वरितो त समूरे मुल्क में हड़ताल कई वेंदी।
3: शहबाज शरीफ साहब को बाज़ाब्ता खुद क्लैरिफाई करना चाहिए कि क्या ये वफाकी हुकूमत का पॉलिसी है, बाकायदा वफाकी कैबिनेट का ये पॉलिसी है जो आपका वजीर दफा कह रहा है या नहीं। अगर आपका पॉलिसी है तो रखें उसको, अगर आपका पॉलिसी नहीं है तो लात मार के बाहर निकालो। ये दूसरा एक वफाकी वजीर साहब है, ये कहता है कि 12 सीटें हमारे जेब में ना, जिसका ज़हनियत यही होगा वो तो उनको कोई फिक्र नहीं है। एहतजाज करने वाले बुरा भला होंगे, गलत भी होंगे, लेकिन हुकूमत भी सिर्फ वो सजा एहतजाज करने वालों को नहीं दे रहे, तमाम कश्मीरियों को दे रहे हैं और 30 दिन तक दे रहे हैं। अगर हमारे कश्मीर के माए बहने आंसू रो रहे हैं तो हमारे आंखों से खून के आंसू निकलते हैं।
1: एक वफाकी वजीर चवे तो 12 सीटू सदन खीसे में आन जैसे जहनियत अड़ी होंगी तो उनके कश्मीर की भी का परवाह न होंगी। नू लीग डडियाल मेरोर कोटी ए रावला कोट के कश्मीर जो हिस्सो ही न थी वे। वजी आजम वाजह करे तो बचा वारो वजीर जो चई रो है या संदस पॉलिसी आहे या न। बचाव वारे वजीर जो बयान वजी आजम की पॉलिसी ना है खेस बाहर कटे। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी जो आजाद कश्मीर के इलाके डडियाल में चूंट जलसे के खिताब। बिलावल भुट्टो जरदारी चयो त कें एक जी गलती जी सजा बे के न मिलन घुर्जे। एहतजाज कंदड़ गलत हुंदा पर सजा पूरे कश्मीर के मिली रही है। एहतजाज कंदड़न ऐं हुकूमत खां मुतालबो आहे त आम कश्मीरियुनि खे तकलीफ़ न ॾियो। तजवीज़ ॾिनी त ट्रुथ एंड रीकंसिलेक्शन कमीशन जोड़ी वञे, पर हिन वक़्त ताईं न एहतजाज कंदड़नि ऐं न वरी हुकूमत जो जवाब आयो आहे। दरख़्वास्त आहे त कमीशन जो कम मुकमल थियण ताईं एहतजाज ऐं कार्रवाइयूं रोकियूं वञनि। रियासत पाकिस्तान हरमुज लंग खोलराए सघे थी त मुंहिंजो कश्मीर बंदि आहे उहो बि खोलराए।
2: पाकिस्तान खिते में अमन जी क़याम लाइ अहम किरदार अदा कयो आहे। अमन अमल में फील्ड मार्शल जूं कोशिशूं तारीख़ में सदाई यादि रखियूं वेंदियूं। वज़ीर आज़म जो इस्लामाबाद में B2B कॉन्फ्रेंस खे ख़िताब। शहबाज शरीफ चयो त खिते में जारी बुहरान समूरी दुनिया खे मुतासिर कयो आहे। गॾियल ऐं मज़बूत कोशिशूं ई अमन जो सबब बणिजी सघनि थियूं। चीन पाकिस्तान जो इतमाद जोगो ऐं मुख़लिस दोस्त आहे। चीन हर मुश्किल वक़्त में पाकिस्तान जो साथ ॾिनो। चीनी शहरनि जी सिक्योरिटी पहिरीं तरजीह आहे।
1: कुमारी समेत सिंध मां 15 खां वधीक अफ़वाह ऐं गुम थियल ॿारनि जी बाज़ियाबी लाइ बबरलो बाईपास वटि क़ौमी शाहराह ते धरणो लॻी वियो। पंजाब समेत मुख़्तलिफ़ इलाइक़नि ॾांहुं ईंदड़ वेंदड़ ट्रैफ़िक मुअतल। बबरलो बाईपास वटि 22 ॾींहनि खां धरणो हणी वेठल पीरिया एक्शन कमेटी जे अॻवाननि, वकीलनि, सिविल सोसाइटी ऐं वॾे अंग में मौजूद शहरियुनि क़ौमी शाहराह खे बंदि करे छॾियो। फिरिया एक्शन कमेटी अॻवाननि जो चवणु आहे त क़ौमी शाहराह ते धरणो ॿारनि जी बाज़ियाबी ताईं जारी रहंदो।
2: सऊदी अरब पाकिस्तान जी रेड लाइन आहे। सऊदीअ ते हमिलो पाकिस्तान ते हमिलो सम्झो वेंदो। पाकिस्तान जी सियासी ऐं अस्करी क़यादत ईरानी क़यादत खे आगाह करे छॾियो। ख़बरू इदारे मूजिबि पाकिस्तान जी आला सियासी ऐं अस्करी क़यादत ईरानी क़यादत सां ॻाल्हि ॿोल कई आहे। ईरानी क़यादत खे आगाह कयो वियो त हुसैन सऊदी अरब ते हमला वधाया त पाकिस्तान दिफ़ाई मुआदे तहत सऊदी अरब जी मदद करण ते मजबूर थी वेंदो। मदद तलब करण ते पाकिस्तान सऊदी अरब सां गॾु हूंदो। पाकिस्तानी क़यादत धुरन खे मुतमिन करण जी कोशिश करे रही आहे। यमन सां लॻंदड़ सऊदी सरहद ते पाकिस्तानी।
4: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
5: इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर। होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद ऐं बा अख़्तियार इदारो इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर। नईं मोटरसाइकिल जी सेल कंपनीअ जे मुक़रर कयल रेट ते दस्तियाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया, जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनीअ जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स ख़ुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज्ड जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए, जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन ज़रिए कई वञे थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी। इरशाद ऑटोस हालाणी रोड मेहरापुर। राब्ते जे लाइ 03201800003।
6: खुशखबरी, अपनी जिल्द को दे नई ताजगी, चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ। अब फिकर छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है। गहरी सफाई और फोरी ग्लो जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे, सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार। फेशियल रेजुविनेशन, साफ तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जिल्द, जदीद टेक्नोलॉजी के साथ महफूज और मौसर स्किन केयर। नोट, खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है। आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं। पता, रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नजद रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर। 03003385569।
7: मेहरान आयरन स्टोर हालानी होलसेल डिपो अ नेम टू बी ट्रस्टेड
8: सरिया गार्डर टीयर एंगल चैनल पट्टी लोही दरवाजा सिल्वर जा चौंक सीमेंट रेती क्रेश आई रंग वगैरह बाजार का बार या दस्तयाब आई
7: हाने यचो मेहरान आयरन स्टोर नज बलोच पेट्रोल पंप नेशनल हाईवे हालानी
8: राबते लाए प्रोप्राइटर गुलाम नबी मुगल 03003204372
5: आशिक होंडा शोरूम मेहरा पर एटलेस होंडा मोटरसाइकिल चौक पर एतमाद आई मा अख्तियार 3S डीलर आशिक होंडा मोटर्स मेहरा पर जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कर रेट दे दस्तियाब है सर्विस सेंटर एटलेस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी है होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद आशिक होंडा मोटर्स ते पहेंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो कंप्यूटराइज जैपनी स्टेचिंग मशीन जे जरिए जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर फ्यूल एडजस्टमेंट आरपीएम जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वन्य थी होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जे जेर निगरानी आशिक होंडा मोटर्स एड्रेस इंडस बाईपास नस्त रेलवे लाइन मेहरापुर राप्ती जिलाए आसिम हुसैन आराई 03073592120

कॉलम में मौजूद आहिन फौजी बायरन लाय खुसूसी रियायत हुंदी राबते लाय फौजी अब्दुल करीम 0301-54-4456 ऐं तौकीर अहमद 0306-1623-793।

खुशखबरी जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक साम्हूं वधण बोटा पेट्रोल पंप कोटड़ी कबीर रोड मेरापुर कराची ऐं इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन एम ए डी एच एम एस सिंध आर एच एम बी इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट ऐं फैमिली फिज़िशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा खमीस जुमे छंछर आचर।

0: पुरानो नज़लो निछो मथे जो सूर नज़र जी कमजोरी कन जो वण कन जो सूर घट बुधण में अचण शुगर ब्लड प्रेशर दिल जा मर्ज फालिज खंघ टीबी मादे जी अल्सर मादे जी जलन दिली जो वधण जिगर जा मर्ज हेपेटाइटिस बी सी गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जी कामयाब इलाज कयो वञे थो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी खारिश फट फुरड़ियों ॿारनि में कद जो न वधण मर्दनि ऐं औरतुनि में वज़न जो न वधण उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वञे थो राब्ते लाइ 0301-9196-8191।
1: खुशखबरी, क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़िए, शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है बालों की जदीद और मौसर इलाज एक्सोसोम्स एंड पीआरपी ट्रीटमेंट के साथ बालों का झड़ना कम करने में मददगार कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए नए बालों की निशोनुमा में मदद दे बालों को घना और सेहतमंद बनाए घने मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक।

0: नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहरापुर 03003385569।
1: इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद आई बा अख्तियार इदारो इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर नईन मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कर रेट ते दस्तयाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन ज़रिए कई वञे थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी। इरशाद ऑटोस हालाणी रोड मेहरापुर राब्ते जे लाइ 03201800003।
0: खुशखबरी, अपनी जिल्द को दे नई ताजगी चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है। गहरी सफाई और फोरी ग्लो जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे, सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार। फेशियल रेजुविनेशन, साफ तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जिल्द जदीद टेक्नोलॉजी के साथ महफूज और मौसर स्किन केयर। नोट, खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है। आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं। पता, रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहरापुर 03003385569।

0: अब आप सुनेंगे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
1: वीह खां वधीक अगवा ऐं गुम थियल मासूम ॿारनि जी बाज़ाबी लाइ बबलो बाईपास वटि क़ौमी शाहराह ते धरणो जारी। पंजाब समेत मुख़्तलिफ़ इलाइक़नि ॾांहुं ईंदड़ वेंदड़ ट्रैफ़िक मुअतल। बबलो बाईपास वटि 22 ॾींहनि खां धरणो हणी वेठल प्रिया एक्शन कमेटी जे अॻवाननि, वकीलनि, सिविल सोसाइटी ऐं शहरनि जी वॾे अंग में धरणे में शिरकत। SSP सखर अज़र मुग़ल ॻाल्हियुनि लाइ धरणे वारे हंधु पहुतो। अॻवाननि पारां ॿारनि जी
2: काबीना ने और वजीर आजम साहब ने जो फैसला किया है वो ये है, शफाफियत इस निजाम में लाने के लिए ओबरा को अब से ये जिम्मेदारी दी जाएगी कि रोजाना की बिना के ऊपर। और ना सिर्फ फ्लैट्स का वो रेट जिसके मुताबिक दुनिया के अंदर कीमतें तय की जाती हैं वो अपनी वेबसाइट के ऊपर शाया करे, उस कीमत का जो आपके और हमारे लिए हर पेट्रोल पंप के ऊपर नजर आती है उसके पीछे वो कौन कौन से अंसर हैं जिनसे वो कीमत जाता है, वो भी ओगरा को कहा गया है कि आवाम के सामने पब्लिश करा करे ताकि लोगों को पता चले कि ये कितना नागुजीर है कि हम इस मामले को आगे शफाफियत के साथ लेके चलें। और जो फैसला कर रहे हैं तकलीफ में जरूर होगा पर किस तरह से वो रियासत को मजबूत करने के लिए लाजिम था कि आज 70-80 साल के बाद भी पाकिस्तान 90% अपनी तवानाई की जरूरत इंपोर्ट्स के जरिए मीट करता है कि शहबाज शरीफ साहब ने आज भी FIA IB सारी जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं उनको ये हिदायत जारी कर दी है कि नाजायज मुनाफा खोरी अगर ऑयल सेक्टर के अंदर किसी किस्म की किसी जगह पे होने की कोशिश हुई तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी।
1: वफाकी हुकूमत पेट्रोलियम शयुनि जा अघ रोज़ाने जी बुनियाद ते मुकर करण जो ऐलान करे छॾियो। पेट्रोलियम वारे वज़ीर अली परवेज मलिक चयो आहे त ओगरा रोज़ानो जी बुनियाद ते हुकूमत खां पुछण खां सवाइ आलमी क़ीमतनि मुताबिक तेल अघनि जो फ़ैसिलो कंदी। आलमी सतह ते डीज़ल $110 मां वधी $140 ताईं पहुची वियो आहे। 130 अरब जा वसीला इस्तेमाल कंदे माण्हुनि खे सहारो ॾियण जी कोशिश कई। पेट्रोल आलमी सतह ते सस्तो थियण ते अवाम खे 70 खां 80 रुपियनि जो लीफ ॾिनो वियो। अवाम ते कंहिं बि क़िस्म जो वाधू बार नाहे विधो वियो। अदातारण चयो त ख़ते में छिकताण सबबि पेट्रोलियम शयुनि जे अघनि में वाध थी रही आहे। मुख़्तलिफ़ मुल्कनि मां कार्गो घुराए तवानाई ज़रूरतनि खे पूरो कयो वियो।
0: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
3: अपना शहर अपना घर मेहराबपुर और मेहराबपुर की आवाज़ GAFM 94।